FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 भाद्रपद मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त 2026 सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का असर इसका चैनल है। सवेरे के 6 बजने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित

0: होंगे। श्री सिंह ने सीबीडीटी बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा टीआरएफ का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनटीए ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। एनटीए ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती से वंदन वार चिंतन कार्यक्रम।

俊等。हम जितना ज्यादा बाहर जाकर दूसरों का भला करते हैं, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होता है और परमात्मा उसमें बसते हैं। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अब से कुछ देर बाद यानी कि इस झरोखे के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 289। इसमें आज आप सुनेंगे सुंदरकांड। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ताल प्रवाह का भाग 7। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 बजे और 7:30 पर सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8 बजे और 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम। आलेख और स्वर दीपा माहेश्वरी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर और आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री सायरा बानो पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। समय होगा इस कार्यक्रम का सुबह 9:30 और इसका पुनः प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। विविधा के अंतर्गत आज 11 बजे आप सुनेंगे शैलेंद्र और हुस्नलाल भगतराम को, प्रस्तुति मनीषा जैन की। दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1 बजे श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। दोपहर समाचार होंगे दिन में 2 बजे और 2:30 पर सदाबहार नगमे। आज जानिए मनचाहे गीत में आपका खत शामिल हुआ है या नहीं, और अगर नहीं तो कीजिएगा अगले शनिवार रविवार का इंतजार। दिन में 3 बजे होगा ये कार्यक्रम मनचाहे गीत। संवादक नेहा।

शर्मा, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी। दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए दो फूल जूही के, लेखक हृदय कौल भारती, निर्देशक दीनानाथ। पिटारा के अंतर्गत सुनिए उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग दो। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। कार्यक्रम का समय दिन में 4:00। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 से 6:30 तक। इस बीच 6:00 से लेकर 6:05 तक सुनिए हिंदी में समाचार। संध्या रंजन, ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर। और विशेष जयमाला में आज सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र लेफ्टिनेंट IJS बुटालिया। संपादन एवं प्रस्तुति तेजश्री कामले। इंद्रधनुष में साज और आवाज क्लेरनेट अमर सिंह जस्सल को सुनिए। हवा महल होगा रात्रि 8:00। हास्य नाटिका किस की हार किस की जीत, लेखन श्री कृष्ण, निर्देशन सत्येंद्र शरद का। रात्रि 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 सुनिए आपके लिए कार्यक्रम और 10:00 होगा छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11:00 विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 289। आज सुनिए सुंदरकांड।

लंका की अटारियों में आग लगा, सीता जी का चिन्ह चूड़ामणि लेकर पवनसुत हनुमान इस पार लौट आए हैं। इस शुभ समाचार से वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हनुमान को हृदय से लगाकर श्रीराम ने जनक नंदिनी का हाल पूछा तो कपीश्वर ने प्रभु के विरह में तड़पती सीता का संदेश कह सुना।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं तबला वादक तबला साधक श्री कालीनाथ मिश्रा जी के साथ। ताल प्रवाह में ताल के बारे में, ताल के बारीकियों पर चर्चा हो रही है। हमने सुना है कि जल तरंग, काच तरंग, नल तरंग के साथ साथ एक तबला तरंग भी हुआ करता था
2: जी।
1: उसमें तबले पर राग बजाए जाते हैं, धुन बजाए जाते हैं, और इसके अलावा तबले पर पढ़ंत भी की जाती है। तो पढ़ंत में हमने पंडित बिरजू महाराज जी का बहुत अच्छे पढ़ंत सुने हैं, पंडित किशन महाराज के भी सुने हैं, पंडित गुदई महाराज का भी सुने हैं। इसी सिलसिले में मिश्रा जी से ये पूछना चाहूंगा कि तबला कभी बहुत जोरदार बजाया जाता है
2: जी जी जी,
1: कभी प्रेम से मृदु बजाया जाता है, तो इस बारे में आप श्रोताओं को बताएं ताकि उनको पता लगे कि तबले में क्या खासियत है।
2: पहले तो मैं अपने श्रोताओं को फिर से प्रणाम करता हूं, और हमारे रामकृष्ण दास बाबू ने बहुत अच्छा सवाल किया। पढ़ंत, हर तबला वादक पढ़ंत जरूरी है। जैसे कभी कभी गायक जो गाते हैं तो शब्द पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। अगर आप बोल घुमा के बोलेंगे तो शब्द पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए खाली डांस को नहीं, तबला वाले का पढ़ंत बहुत ज़रूरी है। और रहा तरंग का सवाल आपने कहा, तो ये बहुत पहले बजाया जाता था, अभी आजकल कोई नहीं बजाता है। मैंने जाकिर भाई को सुना है। तो पहले तो हम श्रोताओं को बता दें कि हमारे भारत में कुछ ऐसे से कलाकार

0: हुए हैं पंडित राम नारायण जी, जिन्होंने पहले बोलते थे कि आपने, आपको पता है दास बाबू, आपको भी पता है और मैं श्रोताओं को बताऊं कि बहुत साल पहले एक जमाना हुआ करता था कि डांसर के पीछे, भजन गायक के पीछे तबला वाला कमर में तबला बांध लेता था।
1: जी जी, और सारंगी भी,
0: सारंगी वाले सारंगी बांध लेते थे, हारमोनियम वाला हारमोनियम बांध के उनके पीछे पीछे पीछे पीछे जाए,
1: और नाचने वाला या नाचने वाली खुद गाती थी।
0: हाँ, गाती थी। तो ये पहले के जमाने में हुआ करता था मनीषा जी,
1: अदा की ठुमरी।
0: जी हाँ, और करते करते मैं धन्यवाद देता हूँ अपने गुरु पंडित किशन महाराज जी को कि उन्होंने तबला, भले तबला वाले को बुलाओ, सारंगी वाले को बुलाओ, गाने वाले को बुलाओ, ये शब्द खराब नहीं है, तो वो चुभता है बात। तो ये श्रेय जाता है हमारे पंडित राम नारायण जी को, जिन्होंने सारंगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, फारूक के पिताजी लतीफ खान साहब को। तबले में नाम आता है पंडित किशन महाराज जी का
1: जी।
0: उन्होंने एक गद्दी दे दी कि नहीं, तबला पर भी उठान बजाएगा तो बजाएगा गुदई महाराज जी। संतूर एक कहाँ से आया, और आज पंडित शिव कुमार शर्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, मैं उन्हें प्रणाम भी करता हूँ क्योंकि बहुत
1: किस बुलंदी पर
0: पहुँचा दिया। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया जी को ले लीजिए, आज के जमाने में भारत में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तबला वादक अनिंदो चटर्जी हैं, अरविंद आजाद हैं, सपन चौधरी हैं, अनीस प्रधान हैं, कुमार दादा का तो खैर जवाब ही नहीं है। तो पढ़ंत, पढ़ंत बहुत जरूरी है। आज मैं श्रोताओं को पढ़ के सुनाता हूँ कि पढ़ंत का क्या नाज है। तिन तिन ना, तिन तिन ना, द्रुत लय की चीज है। इसको कहते हैं द्रुत लय का मतलब क्या हुआ, लय के तीन प्रकार हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित का मतलब होता है ठहराओ, आपको ठहरा। साधक का मतलब होता है, आपने बड़ा अच्छा कह दिया कि साधक बैठे हैं, साधक का मतलब होता है तपस्या। आजकल तो लोग प्रैक्टिस बोलते हैं कि प्रैक्टिस किया, रियाज और प्रैक्टिस में अलग अलग शब्द है वो। तो श्रोताओं को, और ताल प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है कि चाहे उसको गंगा की तरफ ले लीजिए कि कैसे वो, उनकी क्या धारा है, तो हम धारा लेते हैं तिन तिन ना तक, दिन दिन ना ना, दिन दिन ना, दिन दिन ना, तिन तिन ना। इसमें मैं फारूक भाई को निवेदन भी करूंगा कि थोड़ा झाला टाइप का बजाएंगे। उठान, पढ़ंत का उठान, दिन दिन दा, दिन दिन ना ना, तिन तिन ना, था। एक बड़ा सुंदर बंदिश पढ़ रहा हूं, तीन दर्जे का। तीन दर्जा क्या चीज है दास बाबू? एक ही बोल के तीन अलग अलग अंदाज, उसे कहते हैं तीन दर्जा। एक स्पीड, दो स्पीड, तीन स्पीड। अधिन दिन ना, अधिन दिन ना, दिन दिन ना तक, दिन दिन दिन तक, इट तक, इट धात्र के धैत्र टका तक, गदेगी न धात्र के धैत्र टका तक, गदी घेर तक, दिन दिन तक, तक तक तक तक तक था।
1: वावा,
0: दिन दिन ना तक, दिन दिन ना ना, दिन दिन ना, दिन ना, दिन ना, अधिन धा तेरे की धा घेर तक, दिन तक धैत्र तक धैत्र तक तक कांग घेर तक था, धा धा धा तेरे की धा घेर तक, दिन तक धैत्र तक धैत्र तक तक कांग घेर तक था, धा धा धा तेरे की धा घेर तक, दिन तक धैत्र तक धैत्र तक तक कांग घेर तक था, धा धा दिन ना, दिन दिन ना। ये है पढ़न। अब इसी तीन ताल में हम देखिए अलग छंद लेते हैं, कतिन ना तक धन ना ना, कतिन ना ना, कतिन ना तक, तिन ना तक धन ना ना, आड़ कुआड़ बियाड़ का अंदाज।
1: जी जी,
0: तक तक धिन तक तक धिन, सात का छंद है। बिजली परन क्या चीज होती है, ये खास बनारस का अंदाज है।
1: अच्छा,
0: तड़ी तड़ तड़ धते धके तड़ धके ने क्रांत न कतिन ता, कतिन ना ना, ना दिन दिन ना ना, तिन तिन ना तक धिन, तड़ी तड़ तड़ धते धके तड़ धके ने क्रांत न कतिन ता, घघरात बिजुघटान धके न ता, तके न ता, तके न ता, दिन ना, दिन दिन ना ना, दिन दिन ना तक दिन दिन।
1: बजा के भी बताइए ना,
0: तड़ी तड़ तड़ धते धके तड़ कर दिन ना, दिन दिन ना ना, दिन दिन ना, तड़ तड़ तड़ धते धके तड़ धके न क्रांत न कतिन ता, घघरात बिजुघटान धके न ता, तके न ता, तके न ता, दिन दिन ना ना, दिन दिन ना, दिन दिन ना। अब शिव परन क्या है? ओम दीमिक दीम डमरू बाजे, गिर कैलाश शिखर पर नाचे, धीमिक धीमिक। अब देखिए धीमिक धीमिक तो वजन में वजन आना चाहिए, ये नहीं कि मैं खाली चिल्ला के बोल रहा हूँ
1: जी।
0: ओम दीमिक दीम डमरू बाजे, गिर कैलाश शिखर पर नाचे, धीमिक धीमिक धीम मृदंग बाजे, शीश गंग अरधंग विराजे, उमा रमा हर सब सुर साजे, कर त्रिशूल डमरु वि नाचे, धरिकृत। यह है पढ़ंग। अब ये ताल द्रुत लय हमने लिया है आज श्रोताओं को, तो मैं फारूक भाई से निवेदन करता हूँ कि छोटा सा झाला कांग दिखाइए ना।

0: था तीर किट था घेड़ नग धीन तक था तेरे किट था घेड़ नग था तेरे किट था घेड़ नग धीन तक कांखंत था। श्रोता इसे कहते हैं चार दर्जा।
1: अच्छा
0: हाँ जी चौपल्ली अलग अलग बोलों का और अलग अलग चरण। धा तीर कीट धा घेड़ नग धीन तक धा तेरे किट धा घेड़ नग धा तेरे किट धा घेड़ नग धीन तक धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेरे धेर

0: ये था चार दर्जे का चीज। अब एक बात और बताना चाहूंगा
1: जी
0: कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जैसे अब्बा जी, अब्बा जी ने बहुत से, अब्बा जी मतलब जाकिर भाई के पिताजी अलरखा खा साहब
1: जी जी,
0: बहुत से पिक्चरों में म्यूजिक भी दिए हैं वो। और मैं एक फिल्म का नाम बताना चाहूंगा जिसमें पंडित शिव कुमार जी का तबला है पूरा।
1: अच्छा।
0: हाँ जी,
1: आपको हाँ, वो तो तबला भी बजाते थे।
0: लाजवाब
1: जी जी।
0: और लयकार तो ऐसा था कि मतलब आप बता नहीं सकते,
1: दिखाते
0: जी सब। हाँ, जिस पिक्चर का नाम है गाइड।
1: अच्छा।
0: राग है मिस्र खंबावती, बहुत कम सुनने को मिलता है
1: जी।
0: ताल है कहरवा, अद्धा, तीन ताल और झाला।
1: अरे वाह,
0: ये शिव जी का खास तबला बजाया हुआ है। गाना है

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी सातवीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अभी आप सुन रहे थे संगीत सरिता। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर, सुप्रभात राजस्थान। आकाशवाणी अलवर के लोकप्रिय प्रातःकालीन कार्यक्रम नमस्कार अलवर में मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय श्रोताओं, जब रात के अंधेरे में हम आकाश की ओर देखते हैं तो अनगिनत तारे हमारी कल्पनाओं को पंख देते हैं। कभी चांद को देखकर कविताएं लिखी जाती थी, आज उसी चांद पर भारत अपने कदमों के निशान छोड़ चुका है। कभी अंतरिक्ष केवल कल्पना था, आज वह विज्ञान है, तकनीक है, मानव प्रतिभा का नया आयाम बन चुका है। दोस्तों, इसी वैज्ञानिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव को समर्पित है आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। आज का विषय है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, उपलब्धियां और चुनौतियां। प्रिय श्रोताओं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस केवल वैज्ञानिकों का उत्सव नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय का गौरव है जिसने यह विश्वास रखा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद असीमित उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमें सिखाती है कि सपने जितने बड़े होंगे, उपलब्धियां भी उतनी ही ऊंची होंगी। तो आइए श्रोताओं, इस गौरवपूर्ण यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर साथ साथ चलते हैं।

श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा किसी बड़े बजट से नहीं बल्कि बड़े सपनों से शुरू हुई। आज दुनिया जिस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रशंसा करती है, उसकी शुरुआत अत्यंत साधारण संसाधनों से हुई थी। वैज्ञानिकों ने सीमित साधनों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की थी। आज भारतीय उपग्रह मौसम का पूर्वानुमान लेते हैं, किसानों की सहायता करते हैं, समुद्री तूफानों की जानकारी पहुंचाते

करते हैं, संचार व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह केवल विज्ञान की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि आत्मविश्वास, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण की कहानी है। तो आइए इसी प्रेरणा के सुनते हैं कार्यक्रम का पहला ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, और जिसमें हम बात कर रहे थे हमारे सामने आई चुनौतियों की। कार्यक्रम चल रहा है आपका फेवरेट नमस्कार अलवर। दोस्तों, जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक पहुंचा, तो केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने भारतीय वैज्ञानिक क्षमता को नमन किया, नतमस्तक किया। इस सफलता ने यह सिद्ध कर दिया दोस्तों कि इच्छा शक्ति, अनुशासन, टीम वर्क से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, उसे संभव किया जा सकता है। आज भारतीय युवाओं में विज्ञान के प्रति उत्साह बढ़ा है। विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। यही जिज्ञासा भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करती है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 103.1 अलवर का सरिश का चैनल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम नमस्कार अलवर। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 103.1 अलवर का सरिस का चैनल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम नमस्कार अलवर। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान का संबंध केवल रॉकेट या ग्रहों से है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसका लाभ हम प्रतिदिन उठाते हैं, हर जगह उठाते हैं। मोबाइल नेविगेशन हो, मोबाइल की सटीक जानकारी हो, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा हो, टीवी प्रसारण हो, आपदा प्रबंधन हो या कृषि सलाह, मत्स्य पालन या वन संरक्षण हो, इन सभी क्षेत्रों में उपग्रह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रिय दोस्तों, अलवर जैसे जिले में भी मौसम की जानकारी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है अंतरिक्ष विज्ञान।

और दोस्तों कहते हैं ना कि विज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसका लाभ समाज तक पहुंचे, हर वर्ग तक पहुंचे। इसी भावना के सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

उपलब्धियां हमने बात की, अब हम बात करते हैं चुनौतियों की। दोस्तों, जहां उपलब्धियां होती हैं वहां नई चुनौतियां भी सामने आती ही हैं। आज अंतरिक्ष में हजारों निष्क्रिय उपग्रह और मलबा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये भविष्य के मिशनों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा हो, अंतरिक्ष तकनीक का शांतिपूर्ण उपयोग हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण विषय हैं। हमें विज्ञान को मानव कल्याण के लिए उपयोग करना है, प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग की भावना भी बनाए रखनी है।

बात करते हैं इसी विषय के आगे अगले पड़ाव पर, युवा और अंतरिक्ष का भविष्य क्या हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, आज का विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक हो सकता है। यदि बच्चों में प्रश्न पूछने की आदत विकसित हो, प्रयोग करने का अवसर मिले और विज्ञान को रोचक बनाया जाए तो सभी भारत के वासी आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। अलवर सहित राजस्थान के अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिताओं और नवाचार कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में कोई युवा वैज्ञानिक अलवर की धरती से निकलकर भारत के अगले अंतरिक्ष अभियान का हिस्सा बन सकता है। क्यों, हो सकता है ना दोस्तों।

प्रिय श्रोताओं, आकाश की ऊंचाइयां हमें यह संदेश देती हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमें सिखाती है कि सीमित साधन भी असीमित उपलब्धियां दे सकते हैं, यदि संकल्प दृढ़ हो और लक्ष्य स्पष्ट हो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस केवल अतीत की उपलब्धियों का उत्सव नहीं है दोस्तों, बल्कि भविष्य के संकल्प का दिवस भी है। आइए हम अपने बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करें, प्रश्न पूछने की आदत को प्रोत्साहित करें और विज्ञान को जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि दोस्तों, आज का जिज्ञासु विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक बन सकता है और आज का वैज्ञानिक ही कल के भारत का भविष्य लिखता है, है ना दोस्तों। इसी विश्वास और शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम सुनते रहिए। नमस्कार अलविदा।

श्रोताओं, मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नई प्रेरणा के साथ। इसी के साथ मुझे अपने दोस्त नरेंद्र सिंह मोतवाल को दीजिए रुखसती, इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, FM बैंड 103.1 MHz पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में पहली पेशकश है अभिलाषा फिल्म की, जिसमें गाया है गीत मोहम्मद रफ़ी ने और मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है गीत, आर डी बर्मन का संगीत।

0: श्रोताओं, नगमे अभी और भी हैं फिल्म संगीत में, लेकिन पहले सुन लें जरूरी संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: आगे सैलरी? नहीं झुमके
6: ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके।
6: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या?
6: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: और आइए अगला नगमा सुनते हैं आशाएं फिल्म से। शफाकत अमानत अली की आवाज में है और गीत के बोल लिखे हैं अली हुसैन ने, संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

अभी आपने सुना आशाएं फिल्म का एक गीत सुलेमान की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला नगमा। श्रोताओं, ये गीत लिया है हमने सलामी फिल्म से, कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज में, नदीम शरवण का संगीत।

अभी आपने सुना सलामी फिल्म में कुमार शानू और आशा भोसले को। और आइए सुनते हैं कुमार शानू और साधना सरगम को फिल्म दामिनी में। समीर ने लिखे हैं बोल और संगीत दिया है नदीम शरण ने। फिल्म का नाम दामिनी।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण

0: के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
3: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचा

0: बताया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में दो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दो देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय सेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना

0: में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना

0: में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात FM बैंड 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। पेशे खिदमत है सुगम संगीत। आज के फनकार हैं गुलाम अली। तो आइए सुनते हैं पहली पेशकश, तुझे क्या खबर मेरे हमसफर।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर

0: हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के फनकार गुलाम अली, आइए सुनते हैं उन्हीं की गई अगली पेश।

अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत, फनकार थे गुलाम अली। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य पत्रिका, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता, फिजियोथेरेपी से स्वास्थ्य लाभ, श्रीमती शिखा से अर्चना जैन की बातचीत।

0: नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना जैन का अभिनंदन। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अक्सर खान पान और व्यायाम की बात करते हैं, लेकिन जब शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो, जोड़ों की अकड़न या चोट लग जाए, या फिर किन्हीं जटिल सर्जरीज जैसे घुटनों, कमर आदि जोड़ों के ऑपरेशन के बाद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुगम बन सके, उसे हम आराम से जी सके, उसके लिए फिजियोथेरेपी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिजियोथेरेपी हमारी इन जटिल समस्याओं में, हमारी रिकवरी में कैसे सहायता करती है, कब और कितने समय के लिए हमें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, इन्हीं विशेष बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने आकाशवाणी अलवर के स्टूडियो में आमंत्रित किया है रेनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शिखा तिवारी को। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: शिखा जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है और किन किन प्रॉब्लम्स में ये कारगर है।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं मिथ को तोड़ते हुए बताना चाहूँगी कि आम भाषा में लोगों को लगता है केवल मसाज से रिलेटेड होता है फिजियोथेरेपिस्ट। ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट हेल्थ केयर की वो ब्रांच है जिसमें एक्सरसाइज, फिजिकल और मैनुअल थेरेपीज और कुछ मशीन्स के माध्यम से हमारी मोबिलिटी, हमारी स्ट्रेंथनिंग और हमारी फिजिकल एबिलिटीज को और रिहेबिलिटेशन को जिससे बढ़ाया जाता है और हमारे आम तौर पे जो हमारे डेली फंक्शंस हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत आवश्यक है।
0: जी, कई बार हम देखते हैं कि जैसे हमारे जोड़ों में, घुटने या कमर आदि में दर्द हुआ तो फिजियोथेरेपी अगर हम ले लें और तो क्या हम उसी से ही रिलीफ पा सकते हैं या फिर मतलब सर्जरी की ही जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप?
1: बिल्कुल, जैसे आपने पहले पूछा था, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है। ये छोटे बच्चों से लेकर और ऑफिस गोइंग प्रेग्नेंट वीमेन, पोस्टपार्टम वीमेन, इसके अलावा हमारे एल्डरली लोग जिनको गेट प्रॉब्लम ना हो, उनका ठीक से मूवमेंट हो और फॉल से वो बचें, इन सभी में ही बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने बताया कि ये जो पेन है या सर्जरीज हैं, क्या ये ज़रूरी होती हैं या फिजियोथेरेपी से आराम आ सकता है, तो सबसे पहले तो समस्या का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है
0: कि समस्या किस तरह
1: किस तरीके की समस्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है। तो कुछ केस

0: में जब ये एक स्टार्टिंग स्टेज में होता है तो फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल होता है इसमें, ना केवल इसे कम करने का बल्कि उसे वहीं रोक देने का। तो
1: जी
0: बहुत सारे केसेस में सर्जरीज को रोका जा सकता है इसके माध्यम से। बाकी फिर असेस करते हैं कि किस ग्रेड की पोजीशनिंग है, और फिर सर्जरी अगर ज़रूरत होती है तो सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी का उतना ही रोल होता है।
1: जी अभी आपने कहा कि प्रेगनेंसी में भी, तो प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरेपी कारगर है, और किस तरह ये हम आपसे जानना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, अमूमन ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी में रेस्ट करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमारी बॉडी को मूवमेंट हर स्टेज पे चाहिए होता है,
1: जी
0: और प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है।
1: जी
0: तो ऐसे में प्रॉपर मूवमेंट, स्टेबलाइज्ड एक्सरसाइजेस,
1: जी
0: और साथ ही में क्या होता है, हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो
1: जी
0: प्रेगनेंसी में बहुत वीक हो जाती हैं। तो ऐसे में यदि हम वो एक्सरसाइजेज उनको ट्रेन कर दें तो ये बार बार, जैसे यूरिन, कई बार ऐसा होता है कि उनका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है यूरिनेशन पे,
1: जी
0: तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज के माध्यम से बहुत हद तक ठीक की जा सकती है।
1: जी
0: तो इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है, बट प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथनिंग करने में उन मसल्स को।
1: जी शिखा जी, अक्सर हमें जैसे फ्रैक्चर कभी हो जाता है या आफ्टर सर्जरीज फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है, तो वो मतलब टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, कितने टाइम बाद हमें फिजियोथेरेपी लें और कितने टाइम के लिए होनी चाहिए वो?
0: जी बिल्कुल, फिजियोथेरेपी आपने जैसे बताया फ्रैक्चर और सर्जरी में इसका बहुत ही मेजर रोल होता है। अब डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कहाँ का है, ये सर्जरी किसकी है, क्योंकि
1: जी
0: फिजियोथेरेपी आम तौर पे लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के बाद ही ज़रूरत इनकी होती है, बट ऐसा नहीं है। कार्डियक सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, न्यूरो सर्जरीज के बाद भी इसकी आवश्यकता होती है, और इसी तरीके से और भी किसी तरीके की भी सर्जरीज में इनकी ज़रूरत होती है। तो टाइम पीरियड अगेन, किस तरीके की सर्जरी है
1: जी
0: और जो जो सर्जन है उसके कोऑर्डिनेशन में उन चीज़ों को सेट किया जाता है। आम तौर पे अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो 24 घंटे में फिजियोथेरेपी का काम शुरू हो जाता है,
1: ठीक
0: क्योंकि
1: है
0: बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जरी के बाद हीलिंग, और हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलेशन। तो
1: जी
0: सर्कुलेशन के लिए आपको मूवमेंट की ज़रूरत होती है जो आप ठीक सर्जरी के बाद नहीं कर सकते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करते हैं किस तरीके से कम मूवमेंट में आप सर्कुलेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस तरीके की सर्जरीज के बाद धीरे धीरे धीरे कैसे जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो तब आप फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट और बाकी फंक्शंस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं।
1: जी अगर बात करें हम घुटनों की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, तो उसमें सुनते हैं कि फिजियोथेरेपी काफ़ी चाहिए होती है, लेकिन ये बहुत शुरू के दिनों में पेनफुल भी होती है, क्या कहेंगे इस बारे में?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स में, जैसे मैंने अपोलो में भी काम किया है, तो वहाँ पे शुरू से ही इन रिप्लेसमेंट्स के बाद फिजियोथेरेपी को डे 1 से ही
1: शुरू
0: शुरू
1: किया
0: कर दिया
1: जाता
0: जाता
1: है।
0: है। पेन होता है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट को ये पता है कि किस रेंज ऑफ मोशन तक उसको लेकर जाना है
1: जी
0: मूवमेंट को। यदि आप क्या करते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प नहीं लेते हैं, आप खुद से वो एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपको ये समझ नहीं आता है कि पेन के किस लेवल तक को हमको सहन करना है और किसके बियॉन्ड जाना है।
1: और एक इसका जो प्रॉपर तरीका है वो भी शायद हमें फिजियोथेरेपिस्ट ही बता पाएंगे।
0: बिल्कुल, देखिए एक्सरसाइज सारी ही ठीक होती है, एक्सरसाइज कोई भी गलत नहीं होती है, गलत होती है उनकी टेक्निक।
1: जी
0: तो टेक्निक एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही आपको बता सकता है। आपने जिम में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, अगेन उनके शोल्डर में पेन होता है, बैक में पेन होता है, और कितनी बार उनको लिगमेंट टियर हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि प्रॉपर ट्रेनिंग के अंडर वो नहीं करते हैं और उनको इसकी जानकारी नहीं होती है।
1: जी अच्छा शिखा जी, एक आम प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है कि सबका काम कंप्यूटर लैपटॉप्स पर है, और खासकर कंधे गर्दन पेन इनका बढ़ता है इस पोजीशन में लगातार काम करने से, उसके
0: जी
1: लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत सही कहा आपने, कोविड के दौरान तो ये समस्याएं चरम सीमा पर थी, और आज भी बहुत सारी वर्किंग जॉब्स हैं जिसमें लोगों का बहुत समय तक सीट से उठना या लैपटॉप के आगे से हटना बहुत ही मुश्किल होता है, या आमतौर पे भी आप देखिए आजकल बच्चे भी नहीं हटते हैं मोबाइल और
1: जी
0: टीवी के आगे से। तो बिल्कुल, क्योंकि एक समय पर एक ही पोस्चर में बहुत लंबे समय तक जब आप बैठते हैं,
1: जी
0: और स्पेशली जब आप लैपटॉप और मोबाइल यूज कर रहे हैं और आप गर्दन झुका के कर रहे हैं,
1: जी
0: तो नेक पे स्ट्रेन आता है और इस पे इसकी मसल्स पे अतिरिक्त दबाव पड़ता है,
1: जी
0: न केवल नेक और शोल्डर बल्कि कमर और पैर, इन
1: जी
0: दोनों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है।

0: सकता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम 30 मिनट से, वैसे अमूमन हम बताते हैं कि आप 30 मिनट में उठ के 2 मिनट वॉक कीजिए,
1: जी,
0: 1 मिनट वॉक कीजिए, बट लोग
1: जिससे
0: कहते हैं
1: सर्कुलेशन बना
0: जी,
1: रहे।
0: लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमारी मीटिंग चलती हैं, ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसका बहुत अच्छा तरीके का, आपने कभी देखा होगा कि दर्जी जब सिलता है पैर, तो उसके पैर चलते रहते हैं। तो
1: जी
0: अगर आप टू रेजेस बैठे बैठे करेंगे, या फिर
1: हाँ
0: आप अपने शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे, या आप अपने नेक मूवमेंट्स को रखेंगे, और एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है आपकी ग्लूट्स होते हैं जो मसल्स, जिसको हम आम भाषा में बट की मसल बोलते हैं, उसको अगर आप स्क्वीज कर लेंगे तो
1: जी
0: लोअर बैक पे कम प्रेशर आता है। तो इन चीज़ों से भी आप इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इनसे नेक पे और शोल्डर्स में, बैक में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा होता है।
1: जी इस पे हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा मनोरंजन की तरफ चलते हैं। और म्यूजिक थेरेपी भी एक थेरेपी है। तो कौन सा गीत आज हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगे अपने पसंद का?
0: खत एक सॉन्ग है, तो वो मुझे बेहद पसंद है, अगर आप वो लगा सके तो।
1: जी बिल्कुल, तो लेते हैं श्रोताओं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं गीत।

0: श्रोताओं, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारी मेहमान फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शिखा तिवारी हमारे साथ हैं और इनसे हम चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं यही जानना चाहूँगी कि अभी हम बात कर रहे थे लगातार जिन्हें बैठ के काम करना होता है लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे, तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर ये सीवियरिटी हो जाती है तो फिजियोथेरेपी में आप किन टेक्निक से इसे आराम देते हैं?
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक से चालू करते हैं कि यदि आप बहुत देर लैपटॉप पे काम करते हैं तो इन जनरल आपने देखा है कि मोबाइल या लैपटॉप को लोग या तो अपने चेस्ट लेवल पे रखते हैं या फिर बहुत नीचे रखते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमेशा ये चीज़ें हमारे आई लेवल पे होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो आप अपने डेस्क को ऊपर कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कीजिए,
0: गर्दन ना झुके,
1: फ्लेक्शन ना हो गर्दन का, या आप अपनी चेयर को एडजस्ट कीजिए
0: जी।
1: साथ ही अगर आप काफ़ी देर बैठते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक 20-20-20 रूल होता है
0: जी,
1: कि आप हर 20 मिनट्स में 20 सेकंड के लिए खड़े हों और 20 स्टेप्स ले लें। वो पॉसिबल नहीं है तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, आप अपने हील्स को रेज कर सकते हैं, बट मसल्स को स्क्वीज कर सकते हैं, आँखों को आराम, आँखों की भी मसल्स बहुत थकती हैं
0: जी जी,
1: तो आप पलके झपकते रहिए। इसके साथ साथ आप बैठे बैठे भी अपने शोल्डर और नेक की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं
0: जी। और अच्छा, बात करें खेल हमारे खिलाड़ियों की, तो खेल के दौरान जब चोट लग जाती है और तो उसके बाद फिजियोथेरेपी हमें काफ़ी मदद करती है, लेकिन कितने टाइम बाद खिलाड़ी अपने मैदान पर लौट सकता है?
1: जी बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स में पता नहीं चलता, बट जैसे क्रिकेट आमूमन सभी लोग देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटा सा स्ट्रेन या स्प्रेन आता है, तो आपने देखा होगा कि मैदान में ही फिजियोथेरेपिस्ट जाकर उसको, जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वहीं ठीक कर देते हैं। बट कभी कभी चोट गंभीर होती है तो उसका असेसमेंट करने के बाद ये सजेस्ट किया जाता है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो बहुत ही चरणबद्ध तरीके से और सुरक्षित तरीके से उनको खेल में वापसी के लिए तैयार किया जाता है
0: जी।
1: जैसे सबसे पहले उनको जो भी चोट लगी है तो उससे जो होने वाली स्वेलिंग है उसे कम किया जाता है, स्टिफनेस है उसे कम किया जाता है, पेन को कम किया जाता है, फिर धीरे धीरे जब ये चीज़ें सही हो जाती हैं तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस करी जाती हैं। उसके बाद उनके जो स्पोर्ट्स ड्रिल है कि उनको क्या क्या ज़रूरत होती है मूवमेंट की, उस पर वर्क किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं तो उसके बाद उनकी जो मूवमेंट है, फिर उनकी मसल की स्ट्रेंथनिंग है, जॉइंट मोबिलिटी है, और फिर इस पे काम करके जो उनके खेल के लिए ज़रूरी है उनकी मसल्स पे काम करके उनको सुरक्षित वापस आने के लिए, जिसको रिटर्न टू प्ले कहा जाता है हमारी भाषा में, तो उसके लिए हम तैयार करते हैं
0: जी। अक्सर उनमें देखा जाता है कंधे का उतरना, ये इंजरी स्पोर्ट्स में काफ़ी देखी जाती है, तो इसमें भी यही रूल है कि?
1: जी बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी सीवियरिटी होती है, प्लस ये पता होना चाहिए कि कंधा उतरना बहुत ही आम लैंग्वेज है, बट इसमें लिगामेंट में प्रॉब्लम आया है या जॉइंट में प्रॉब्लम आया है या मसल में स्ट्रेन आया है, तो इसको असेस करके टेस्ट के माध्यम से फिर उसके अकॉर्डिंग इस पे वर्क किया जाता है
0: जी। अच्छा, ये तो रही बातें हमारे बड़ों की, अगर छोटे बच्चों को इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो फिजियोथेरेपी में मतलब सेम ट्रीटमेंट जो बड़ों के लिए है वही छोटे बच्चों के लिए भी रहता है?
1: बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि हमें ऐसा लगता है फिजियोथेरेपी खाली एडल्ट्स के लिए या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होती हैं, बट जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फिजियोथेरेपी बहुत ही वास्ट ब्रांच है, इसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कुछ लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं केवल चाइल्ड में
0: जी,
1: जिसे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी कहते हैं, कुछ न्यूरो में करते हैं, कुछ जेरियाट्रिक मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, कुछ जैसे मैंने बताया विमेन के लिए, तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपीज होती हैं।

0: जैसे कई डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, कुछ पॉस्चरल इश्यूज़ होते हैं, इवन बच्चों में जो न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके माध्यम से फिजियोथेरेपी में हेल्प किया जाता है
1: जी।
0: आज के समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा है कि एक समय था जब हम बाहर जाते थे तो बुलाने से भी खेलते हुए वापस नहीं आते थे
1: जी।
0: और आज बच्चे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, तो मोबाइल और टीवी से दूर उन्हें नहीं किया जा सकता, बट उन्हें एटलीस्ट इतना तो गाइड किया जा सकता है कि किस तरीके से बैठ के देखें, पोस्चर क्या होना चाहिए, आईज किस लेवल पे हों, कितनी दूरी होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनको नेक एक्सरसाइजेस और शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस पे वर्क करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम गाइड कर सकते हैं बच्चों को।
1: अच्छा शिखा जी, आज टेक्निक्स काफ़ी एडवांस हो गई हैं, तो फिजियोथेरेपी में भी ये चीज़ देखने को मिलती है क्या? मतलब क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें आप फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं?
0: जी बिल्कुल, पहले फिजियोथेरेपी एक मैनुअल थेरेपी मानी जाती थी
1: जी।
0: इसलिए इसे ऐसे समझा भी जाता था कि केवल मसाज किया जाता है। धीरे धीरे इसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई और बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइज मशीन्स हमको अवेलेबल हुई हैं
1: जी।
0: तो बहुत सारी समस्याओं के लिए हमारे पास जैसे IFT है, टेंस है, सोनोथेरेपी, आपने सुना होगा शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं तो फ्रोजन शोल्डर होते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रॉब्लम होती है, टेनिस एल्बो वगैरह हैं, तो इन सभी के लिए हमारे पास बहुत नए नए टेस्ट, एडवांस टेस्ट आ गए हैं जिनसे हम बहुत ईजिली बिना स्कैनिंग के खुद परफॉर्म करके मैन्युअली पता भी कर सकते हैं और मशीन्स के माध्यम से इसे दूर भी कर सकते हैं
1: जी। तो लेते हैं श्रोताओं एक और छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम लौटते हैं अपनी चर्चा पर।

0: शिखा जी, लोग कई बार ऐसा होता है कि इंजरीज हुई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो खुद से भी कुछ एक्सरसाइज ये सब कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक बार फिर से आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या हम ऐसा करते हैं तो वो ठीक है, या फिर हमें डॉक्टर की सलाह से या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेकर ही ये सब करना चाहिए?
1: बिल्कुल. एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम पे हम काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, तो गूगल पे हमारी बहुत
0: जी, मैं वो
1: ज़्यादा
0: उसी पर आना चाह रही थी।
1: जी, तो गूगल में देख के कई लोग इस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज कर लेते हैं या ये ठीक है इस प्रॉब्लम के लिए. सबसे पहले तो यदि आप इसके लिए स्पेशलाइज नहीं है तो आप असेस ही नहीं कर सकते कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है,
0: जी
1: क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें हमें भी बहुत सारे टेस्ट के माध्यम से देखना पड़ता है और उनको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है.
0: जी
1: दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता भी चल जाता है तो सारी बॉडीज अलग होती हैं, सबका स्टेमिना अलग होता है, तो आप एक ही चीज़ हर किसी पर अप्लाई नहीं हो सकते.
0: जी
1: तो कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ अच्छा अपने लिए करने जा रहे होते हैं और कुछ खराबी कर लेते हैं.
0: जी
1: तो मुझे लगता है बेसिक स्ट्रेचिंग की बात करें तो ठीक है, लेकिन किसी समस्या के लिए अगर आप एक्सरसाइजेस को खुद कर रहे हैं तो शायद समस्याएं बढ़ सकती हैं. तो मुझे यही लगता है कि आपको ज़रूर गाइडेंस की ज़रूरत होनी चाहिए, और आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अपनी किसी भी समस्या, कोई इंजरी है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही एक्सरसाइजेस करें.
0: जी अच्छा, अगर फिजियोथेरेपी के दौरान हमारा पेन बढ़ रहा है तो हम क्या करें?
1: क्या होता है कि कभी कभी फिजियोथेरेपी के दौरान भी पेन बढ़ता है,
0: जी
1: लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होता है कि कहाँ तक पुश करना है.
0: जी
1: तो पेशेंट क्या होता है, जब खुद एक्सरसाइज करता है या तो वो पेन के लेवल तक जाता नहीं है या वो पेन के बियॉन्ड वहाँ तक चला जाता है जहाँ उसको उस रेंज में नहीं जाना चाहिए. तो अगर पेन बढ़ता भी है तो आप मेडिसिन्स वगैरह ले सकते हैं, साथ में उसके साथ अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप प्रॉपर फिजिशियन के पास या फिर पर्टिकुलर जिस भी प्रॉब्लम में है तो आप पर्टिकुलर सर्जन के पास जाके और उस समस्या को डिस्कस कर सकते हैं. और हम लोग भी रेफर करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी कारण से पेन बढ़ रहा है और वो उन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है
0: जी
1: तो उसका रूट कॉज जान के एमआरआई सीटीज के थ्रू और फिर हम अगर उसको सर्जिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है तो हम उस तरीके से रेफर करते हैं.
0: जी बहुत ज़रूरी शिखा जी, कॉन्वर्सेशन हमारा इसको लेकर हुआ है, लेकिन मैं बस आपसे यही जानना चाहूँगी कि हमारे जो युवा हैं और बच्चे भी, सभी के लिए एक जनरल मैसेज आपका क्या होगा जो अपनी डेली लाइफ को अच्छे से वो जी सकें और मतलब अच्छी उनकी लाइफ हो?
1: जी बिल्कुल, जब तक हमें कोई समस्या नहीं होती तब तक हमें इन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती कि हम नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल स्टेयर्स क्लाइम कर रहे हैं. मैं ये कहना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी कोई प्रोसेस या खाली एक स्टडी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम योगा को भी कहते हैं, क्योंकि हम कई चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते. हमें लगता है अरे उठना बैठना इसकी भी कोई तरीके होते हैं क्या, सोकर खड़े होना इसका भी अपना एक तरीका होता है. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि हम तो बस सो के खड़े हुए थे ऐसा हो गया, या सोते सोते ही हमारे हाथ में दर्द ज्यादा हो गया.
0: हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि एकदम अचानक से नहीं उठना चाहिए सोते
1: हाँ,
0: हुए भी।
1: तो हमेशा उल्टा करवट करके खड़े हों, खड़े होते वक्त आपकी कैसी पोजीशनिंग होनी चाहिए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर इसको आप पार्ट ऑफ अपने जिस तरीके से अपने लाइफ का पार्ट बनाएंगे तो प्रॉपर पोस्चर,
0: हाँ
1: प्रॉपर पोजीशनिंग, और थोड़ा भी अगर आपको बैलेंस में, गेट में किसी भी तरीके की समस्या होती है तो इसके लिए आप गाइडेंस लें
0: जी
1: और ट्रीटमेंट लें. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक्सरसाइज को बहुत ही इम्पोर्टेंस दें. मैंने देखा है कि आजकल बहुत सीडेंट्री लाइफ हो गई है, तो मेरा मैसेज यही है कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, काउच पोटैटो ना बने. और एक छोटी सी टिप है कि आप कुछ भी खाएं उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते तो, और साथ में स्ट्रेचिंग कीजिए.
0: जी तो शिखा जी, बहुत ही अच्छी आज आपने काम की बातें हमारे श्रोताओं को बताई है, और मैं समझती हूँ कि ज़रूर हमारे सभी श्रोता इन्हें फॉलो करेंगे। और जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि तो डेली की हमारी एक्सरसाइज

हमारा पॉस्चर, इस सब पर हम ध्यान देकर अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और आगे भी ऐसी ही कुछ चर्चा के लिए हम फिर से आपको याद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका, भेंटवार्ता थी फिजियोथेरेपी से स्वास्थ्य लाभ, श्रीमती शिखा से अर्चना जैन की बातचीत। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से लेकर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज, इस वर्ष की थीम है विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश भर में सघन निरीक्षण और कार्रवाई की। और रक्षाबंधन पर राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज रविवार को कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिन वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इस उपलब्धि पर हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा।
0: इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा रखी गई है। इस अवसर पर इसरो की ओर से अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि देश आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में गौरवशाली आयाम स्थापित कर विकसित भारत के संकल्प को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। संबंधित जिलों में निर्वाचन अधिकारी चुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर बनाए गए नियंत्रण कक्षों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही निकाय चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के विभिन्न मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। वहीं स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़मेर में कल विभिन्न स्कूलों में जागरूक मतदाता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर के शास्त्री पार्क में वरिष्ठ नागरिकों ने लोगों को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी भोपाल रामगंज मंडी

0: नई रेल लाइन परियोजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। परियोजना के तहत करीब 25 किलोमीटर लंबे इस नव निर्मित ब्यावरा राजगढ़ सोनकच्छ रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल किया गया। 276 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 27 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। उधर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन से दौसा रेल लाइन पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कल इस खंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से सफलतापूर्वक ट्रायल संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि रेल विद्युतीकरण के बाद क्षेत्र के यात्रियों और व्यापारियों को लाभ मिल सकेगा।
1: 1996-97 में स्वीकृत परियोजना पर 16 मार्च को पहली यात्री ट्रेन आरंभ होने के बाद रेल विद्युतीकरण पूरा कर डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन चलने से खर्च आधा रह जाएगा तथा क्षेत्र का दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, हरियाणा, इंदौर, भोपाल, नागपुर और दुर्ग जैसे प्रमुख नगरों से सीधा जुड़ाव होने से यात्रियों और माल भाड़े में व्यापारियों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज विशाखापत्तनम में होगी। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में परस्पर सहयोग मजबूत करने के लिए एकजुट होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि बैठक में चर्चा करेंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने कल प्रदेश भर में सघन निरीक्षण कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के 101 नमूने इकट्ठे किए गए। राजधानी जयपुर में करीब 7000 लीटर मिलावटी मूंगफली का तेल सीज किया गया। वहीं विभिन्न जिलों में लगभग 1200 किलो दूषित और अमानक खाद्य सामग्री नष्ट की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज अवकाश के दिन रविवार को भी कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। झालावाड़, बारा, बूंदी, डीडवाना और उदयपुर सहित कई मंडलों में विशेष काउंटर संचालित होंगे। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और पैकिंग बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना चाहिए। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में आयोजित IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थी। स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर हुई इस समिट में उन्होंने कहा कि AI से दवाओं की खोज में तेजी लाई जा सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पायलट परियोजनाओं से जनसंख्या स्तर पर कार्यवाहन की ओर बढ़ने के लिए सरकार, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य संस्थानों, स्टार्टअप

0: और उद्योग के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर निर्बाध आपूर्ति और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से कोलंबो में शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से ये मैच शुरू होगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर नवाचार सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा रखी गई है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश भर में सघन निरीक्षण और कार्रवाई की तथा राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज रविवार को कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। सवेरे के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं वार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं। कुमार ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तनिष्क बागची आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और वीजू शाह का संगीत।

0: कमाल।
1: तुषार कपूर की आवाज में तो ये था हमारा आज का खास संगीत सफर, जहां अलग अलग धुनों या फिर एक ही धुनों वाले गीत आपको सुनवाए गए, और कभी धुनें अलग थीं, कभी शब्द अलग थे। इस तरह के गीतों का ये सफ़र था। फिर होगी मुलाकात फिर किसी कार्यक्रम में। फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

1966 में ही आई थी ये जिंदगी कितनी हसीन है।

0: दोस्तों, साहरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे।

दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

0: 1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।
1: जेंटलमैन

और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई

0: जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। सवेरे के 10 बजे हैं, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सिरिस चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती से कार्यक्रम।
5: प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया, इसका मतलब सुबह हो गई है। अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं, इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था, यानी 11-12 साल का, और मुझे क्या समझ है गीतों की, लेकिन बावजूद उसके मुझे वो बीच बीच में आती हुई एंकरिंग, बीच बीच में आते हुए एड फिल्म्स के जो जिंगल्स, और इन सब के साथ इतना जुड़ाव हो गया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
6: ओहो,
5: मुझे लगा कि मैं नहीं, अभी के अभी रेडियो रिपेयर करो। और हमारे नानी माँ का आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक नया रेडियो ले आते। तो मैं एक 11 साल का लड़का रेडियो लेकर बाजार में घूम रहा है कि कोई इसे रिपेयर कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है।
6: कितनी
5: तो
6: प्यारी बात है कि जी, आप जी, इतना जी, ज्यादा जुड़े थे। तो फिर वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
5: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रुपीज में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना, यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है, यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल की बातें है, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहां पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक FM मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहां पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूं ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
6: अरे वाह वाह वाह,
5: आज मेरी मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा या प्यार प्यार ना रहा या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत

0: और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है।
1: क्या बात है। तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा, विविध भारती से इतना जुड़ाव रहा, बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
0: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी, कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहाँ टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा, वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, या तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक, जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
1: जी,
0: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
1: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
0: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी, यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था। क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी। एक अभिनय यानी कि 2-2.25 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है। जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हजार लोगों का एप्लीकेशन वहां उस वक्त गया था।
1: हमें यही सोच रहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है। तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
0: कड़ा मुकाबला तो बेशक था, और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ। तो ये भी एक जिंदगी का सबक है।
1: तो बहुत दुखी हुए होंगे?
0: बहुत दुखी हो गया था। मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो, जब अगर आप NSD में नहीं हुआ है सिलेक्शन तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे, यानी कि मिला जुला कर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात है। यहाँ रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहाँ बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है,
1: बिल्कुल,
0: और वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का, दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी जी।

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
0: ओके।
1: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2-3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे? तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो। और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया, मेरे गुरु सौम्य जोशी जी जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजरात
0: लगातार, उनका तो बहुत अच्छा, हाँ, अच्छे प्लेस अभी भी चले।
1: हाँ, अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों भाई है
0: जी।
1: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
0: वाह वाह।
1: तीन वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
0: क्या बात है।
1: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते है कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला।
0: वाह वाह।
1: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तु तु तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था जो जॉनी लीवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी वैसी, हाँ, इंकलाबी कलम रही शुरुआत से।
0: तो ये सब उन्होंने लिखे?
1: उन्होंने ही लिखे। 2 शौक का सही नगर वस्तु तो, और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर।

0: कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर, और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहाँ थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहाँ से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को।
1: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं, तो एनएसडी की कुछ यादें और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए
0: जी।

0: से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं, तो एनएसडी की कुछ यादें हैं और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
1: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि आप वहां जाते हो ना तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहले ही हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, असम से, तो आपको असामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
0: अरे गजब।
1: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे,
0: ओहो,
1: तो वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है। तो हमने कहा कि हाँ भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीजों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
0: अरे हारमोनियम पे बैठ
1: जाएंगे, हारमोनियम पर बैठ जाएंगे तो वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे के एन पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था ये तैया तैयम, एक रिचुअलिस्टिक थिएटर केरला का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है
0: जी।
1: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहाँ पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जिसमें फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहाँ प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहाँ लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है।
0: तो बिल्कुल।
1: हमारे सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे।
0: अच्छा।
1: वहां पर वहां थांगटा सीख कर आए। हम केरला गए तो हम वहां कल्लरी पैट्टम सीख कर आए, तो आज भी वो कल्लरी पैट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूँ अपना।
0: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
1: भेजते हैं,
0: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
1: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है।
0: वाह,
1: रोज
0: सही बात है।
1: रोज, यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास, अब लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है। क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे, तो और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम

0: मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर
0: जी
1: मुंबई की बातें करेंगे।
0: जी जी जी,
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहाँ पर?
0: जी, धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है।
1: हाँ।
0: जो दोनों सात अजूबे इस दुनिया में,
1: वाह,
0: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
1: बिल्कुल
0: माता को लेकर, कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते हैं ये गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था।
0: अच्छा,
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ।
0: और आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर
1: हाँ,
0: लेते हैं?
1: हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं। तो बहुत
0: तो एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ जिसका नाम रुक्ष्मणी है और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था।

0: कल्चरल ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी, तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो, और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई, और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बम्बई आए, तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बम्बई निकलना है। तो
1: और
0: वही,
1: ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रह चुकी।
0: हाँ, क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे कि अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को चाहते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन, अच्छे से प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी, रहने के लिए हॉस्टल, हवा गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया, अब यहाँ क्या करेंगे। तो यहाँ पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मांझ देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया, और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था। आगरी पाड़ा, मलाड से आगरी पाड़ा जान। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था, और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में। तो मुझे 150 रुपए पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपए, और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हजार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया, और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया।
1: जी जी जी।
0: और फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते थे बच्चों को, वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे, और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ कैसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे,
1: लो अब ये समझाना भी मुश्किल है,
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूँ क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूँ। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी, तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था।
1: ओ, ओ, ओ।
0: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे।
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया, और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना अपना काम कर पाए,
0: अपना अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी

0: क्या पीठ ऊंची ऊंट की। अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो,
1: यस,
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या, पीठ ऊंची ऊंट की।
1: अलग अलग
0: थिएटर एज अ थेरेपी, तो बच्चे हंसते थे और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया, जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना, जो रोजमर्रा, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया, कि लोगों से मिलना,
1: वो एक प्रोसेस है, कि
0: वो एक प्रोसेस है, वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए
0: थे, नहीं थे,
1: अपने फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: पड़ता था। जी जी जी, मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
1: जूहू में,
0: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे
1: जी,
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था, क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस, तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको ऐसे निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो 5 एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी,
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो, स्पोर्ट्स लुक। तो वो 5 फोटोज है, हमने हमारी यात्रा शुरू की। और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमिक बन रही थी उस वक्त, दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था, तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं
1: बड़ौदा
0: चले गए, वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया, चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहाँ तक हो जाए। फिर वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो, तो मैं बोला चलो यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे, लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन। हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है, ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी टशन। ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ
1: और ये पहली फिल्म बनी,
0: पहली फिल्म बनी।
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा?
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, अनिल कपूर,
1: मल्टी स्टार,
0: अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय कृष्ण आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावत है जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे, तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोलूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं।
1: ओके।
0: अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था। तो प्रिंट आउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंट आउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ वो डायलॉग, कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहाँ क्या कर रही, लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया

0: वो सीता है, सीता पर्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते ऐसा कुछ हमने हंसा, तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा, वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को
1: पर्दे पर देखना है,
0: 70mm के पर्दे पर कैमरा ये वो, तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी, मराठा मंदिर अपने आप में एक
1: ऐतिहासिक थिएटर,
0: ऐतिहासिक थिएटर है, तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह, और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा।
0: हाँ, फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था, ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा,
0: एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी, राजपाल यादव जी हो गए और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे एनएसडी रिपेट्री के, तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे, अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार, और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए।
1: बिल्कुल, बजरंगी भाईजान में भी आपने काम किया।
0: जी जी जी जी, बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था, बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन। जी, बिल्कुल, उसके बारे में बताइए कैसा रहा हो?
0: बढ़िया, उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि तीन चार लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था, बोला हम बोल लेंगे सर। अब वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था?
0: हाँ, डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे। और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था।
1: अरे बाप रे,
0: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ,
1: तुम हाँ करना।
0: हाथ करना। तो वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे, बरोड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, वो मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो, कभी आप आज भी वो फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर, सेम स्टार, तो वो मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे बोले, तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में। बोला हाँ सर, मैंने बजरंगी भाई, हाँ कमाल का यार, तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने हंसने का एक सिग्नेचर बनाया
1: जी,
0: था
1: जी, जी।
0: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे,
1: ओके,
0: प्रेम रतन धन पायो, बिग बॉस और बजरंगी भाईजान,
1: ओके,
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था, क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये करजत
0: में। हाँ, करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने को एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान, हाँ, तो सलमान भाई से बोले अच्छा है, अच्छा है, हाँ गुड गुड, ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान, तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने रखता है। जी, एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो कौन सा गाना होगा?
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो झोली मेरी।
1: क्या बात, अदनान सामी की आवाज़ है।
0: जी, जी, जी, जी।

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई। टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी,
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा। टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है जो गुजराती थिएटर है जो पैसों वाला थिएटर है, तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता।

0: जाऊं तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूँ,
1: पंकज त्रिपाठी जी
0: पंकज
1: वाला।
0: त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी, और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है,
1: हाँ
0: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होता है वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले जाते
1: अरे बाप रे,
0: दिस इज अ वन लाइन।
1: जी जी जी
0: तो
1: क्या
0: ये
1: बात है।
0: ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे
1: और
0: मिलते
1: बहुत
0: हैं।
1: पुराना आपका तो नाता रहा है, आपके
0: हाँ,
1: सीनियर रहे
0: ना
1: हैं।
0: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है, आपके आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है
1: हाँ
0: ये बहुत मायने रखता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
1: जी, तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है, और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं, और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि आज से 3,000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था,
1: जी
0: बिफोर बीसी में, हम बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं तो वहाँ से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है, हम ही कमज़ोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमज़ोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है, आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा
1: हाँ,
0: तो कैसे
1: लेकिन हमेशा
0: ऑक्सीजन।
1: ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
0: हाँ, हमेशा कहा जाता है, तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है, और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहां पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए, बहुत इंटीमेट स्पेसेस अब डेवलप हुई है कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूँ ना कि थिएटर घर घर तक पहुँचाने में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाज़ी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य हैं, वो उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की, और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबक की आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये,
1: अंकुर जी ने जो
0: अंकुर
1: बात
0: जी की
1: कही।
0: विधा है ये,
1: जी
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको, हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी, और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें, आपके पास कहानी है और मंच है,
1: बस
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी के हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे, कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा, अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम
0: सेम
1: होगा।
0: टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ, तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में, और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझकर कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में, और
1: बिल्कुल
0: व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं,
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं
0: दोनों
1: चल रही
0: तरफ
1: हैं।
0: की धारा।
1: आप तो कई भाषाएं जानते हैं, और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहां मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
0: मैंने गुजराती थिएटर किया, मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको,
1: अच्छा
0: हम लोग ट्राइबल हैं एक्चुअली,
1: जी
0: वो
1: जी
0: तो
1: तो ये
0: घुमक्कड़ है,
1: मराठी का एक प्रकार है, ये
0: नहीं
1: गुजराती का एक प्रकार है?
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है,
1: अच्छा।
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे वाह वाह
0: अगर आप कहें तो मैं उस बोली में ना, मेरी
1: जी,
0: एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2,
1: हाँ,
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था,
1: तो
0: तो
1: आपने वो किरदार वैसा बनाया या?
0: नहीं, मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर
1: जी जी
0: जिन्होंने
1: जी
0: ओ माई गॉड
1: जी
0: लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी

0: जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतु बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़ जाए रहा था सांझ सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना,
1: ओहो,
0: एकदम
1: इसमें
0: डिफरेंट
1: कुछ शब्द वो
0: है।
1: गुजराती के आ रहे हैं।
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों की ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से
1: हाँ,
0: कुछ
1: तो
0: ले
1: एक
0: लिया,
1: मिक्स है।
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी, यानी कि नुक्ते उकते
1: हाँ
0: लग जाते हैं ठीक ठाक। तो ये है, अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ।
1: जी,
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, कि जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि NSD जाएं और मुंबई आ जाएं, बस लाइफ सेट है।
0: नहीं,
1: तो
0: बिल्कुल नहीं।
1: उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है,
1: जी।
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यावसायिक रंगमंच की तालीम देता है। लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है,
1: हाँ
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं, है
1: हाँ
0: ना।
1: और मुंबई शहर आपको पीसता
0: हाँ,
1: है।
0: पीसता है, जलना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है,
1: जी
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीज़ों में भटक जाते हैं। तो उन चीज़ों में अगर ना भटके, और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है। जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं
1: बिल्कुल
0: अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है। चलते चलते एक गाने की फरमाइश है
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे,
1: जी।
0: और रेणु जी
1: वाह
0: की
1: वाह,
0: कहानी पर उन्होंने जो
1: तीसरी
0: फिल्म
1: कसम बनाई।
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप एक सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
1: वाह वाह
0: तेरे मन में
1: वाह,
0: सनम।
1: जरूर ये गाना सुनाते हैं
0: जी
1: आपको।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।
1: जी जी जी, धन्यवाद। और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है। और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे, जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है। तो रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: तरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। ठीक 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: संदेश के बाद आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
5: बल्कि कहूंगी कि उनके लिखे जो गीत हैं, उसकी कई बार तो पंक्तियां जैसे हमारे लिए रोजमर्रा में लोकोक्तियां या मुहावरे तक बन चुके हैं।
6: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। मानवीय संबंधों में जो क्लिष्टता होती है, कई बार जो जज्बाती मुश्किलें देखने को मिलती है और उनकी वजह से जितने अवसाद इंसानों को झेलने पड़ते हैं, उन सभी को बड़ी सहजता से अपने कलम के सहारे उन्होंने अपनी रचनाओं में उंडेला था और हम सबके दिल को छू लिया था।
5: बिल्कुल, और शैलेंद्र जी की स्मृति को हम आज नमन करते हैं, जिन्होंने लिखा था, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।
6: जीना इसी का नाम है।

0: जयंत जी
1: जी,
0: जिस फलसफे की बात हमने की वो इस गीत में जैसे उभर कर आ रहा था, और कोई श्रोता, कोई दर्शक, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस गीत से प्रभावित हुए बिना रहा हो। ऐसी ही बहुत सी यादें हैं शैलेंद्र साहब की, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, हमें हमारी खुशकिस्मती से मिले दिनेश शैलेंद्र जी, जो शैलेंद्र जी के छोटे बेटे हैं, और उनसे हमने टेलीफोन पर बात की और उन्होंने हमसे यादें साझा की कि किस तरह से पिता शैलेंद्र उन्हें लगते थे, कैसे उन्होंने देखा, और एक गीतकार, फिल्मकार शैलेंद्र दिनेश जी की नजरों में कैसे थे। आइए सुने उनकी इन स्मृतियों को, हमने उनसे टेलीफोन पर बात की। नमस्कार दिनेश जी, मैं विविध भारती की ओर से आपका स्वागत करती हूं और आपके पिता महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका।
2: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दिनेश जी, एक

0: पुत्र से पूछूंगी कि आपने अपने पिता को किस तरह से देखा।
1: मनीषा जी, सच पूछिए तो बाबा जिस दिन गुजरे
0: जी,
1: उसी दिन हमें पता चला कि शायद वो कुछ बड़ा काम करते होंगे, कि इतने सारे लोग, इतनी भीड़, अगले दिन पेपर में उनकी फोटो और उनका न्यूज, ये सब हमारे को टोका सा दिया था इन सब चीजों ने
0: जी।
1: क्योंकि हम लोगों के घर पे माहौल जो था वो ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल, तो हमें तो ऐसा लगता था कि शायद शंकर जयकिशन, राज कपूर, सलील चौधरी, एसडी बर्मन, ये सभी के घर जाते आते रहते होंगे और कोई खास बात नहीं है। क्योंकि बाबा का भी रहन सहन और घर पे जो हम लोगों के साथ उनका वो था बिहेवियर, वो एकदम ही नॉर्मल था। हम सबसे छोटे थे तो जब भी घर आते थे तो अब हमें कोई वो फिक्र नहीं होती थी कि वो थके होंगे या काम करके आए या दिमागी तौर से आदमी थक जाता।
0: जी जी जी।
1: लेकिन हम बोलते थे घोड़ा बनो तो वो घोड़ा बन जाते थे, हमारे साथ म्यूजिक के गेम्स खेलते थे, हम लोग सब बच्चों के साथ वो बहुत ही घुल मिल के और बहुत ही आइडियल फादर। और एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो कार में हम जब उन्होंने बंगला ले लिया था
0: जी जी।
1: तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी थी हमारे घर में, लेकिन बाबा बहुत कम डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोगों के साथ खाते थे।
0: अच्छा।
1: वो अक्सर जमीन पर ही बैठ के खाया करते थे और हम लोगों को वो उन्होंने यही समझाया था कि यही हमारी जगह है, यहीं से हम शुरू हुए हैं। और बार बार वो अपने बचपन की कहानियां हम लोगों को सुनाते थे कि कितनी गरीबी में वो पले बड़े थे
0: जी,
1: वो चाहते थे कि हम लोग भी वैसे ही बने।
0: आपने जो ये बात बताई कि वो जमीन पर बैठकर खाते थे, एकदम जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान जो होता है, वो थे शैलेंद्र जी। और ये उनकी हर गीत में दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके गीतों ने, मैंने जो पहले भी बात कही थी कि उनके गीतों में जीवन दर्शन इतना गहरा और इतनी सरल भाषा, सजनरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, ये इतनी बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में। वहीं आपको तो खैर मैं क्या बताऊं, हम तो सुबह शाम रात दिन जैसे उनके गीतों ने हम लोगों के जीवन को, हमारे श्रोताओं के जीवन को प्रेरित भी बहुत किया। अब मैं दिनेश शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि गीतकार शैलेंद्र अपने पिता को जब आप याद करते हैं तो उनके गीतों को लेकर आपको कैसा लगता है? अभी भी जब आप सुनते होंगे तो कई बार तो आंखें भरती होंगी आपकी, क्योंकि हम लोगों की भी भर आती हैं, तो हमसे वो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसे शेयर कीजिए ना।
1: देखिए, हम तो जब वो गुजरे थे तो 10 साल के ही थे
0: जी,
1: तो उनके गाने सुनते तो रहते थे, हमारे घर में म्यूजिक तो बजता ही रहता था, हर तरह के गाने बजते थे। लेकिन एक्चुअली जब बड़े हुए तब उनके गानों का मतलब समझ में आया, और फिर और जब हमारे एक्सपीरियंसेस हुए तो ये समझ में आया कि वो बहुत ही एक अलग ही किस्म से लिखते थे, जो बहुत कम राइटरों में एक टैलेंट है
0: जी, जी।
1: कि जो भी गाना उनका ले लें आप, वो एक परत अगर उठा दें
0: जी, जी।
1: जो नॉर्मल वर्ड से
0: जी।
1: तो आपको एक अलग मीनिंग अंदर दिखाई देगा और पता चलेगा। हम आज तक उनके गानों के बारे में लिखते हैं और हमें भी सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब उनके गानों में इतनी गहराई होती थी कि एक आम आदमी तो अपने तौर पे गा लेता था। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि गुलजार साहब के साथ एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि होंगे राजे राजकुमार, एक श्री 420 का गाना है, मेरा जूता है जापानी, तो उसके एक अंतरा है कि होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे।
0: क्या बात है।
1: उन्होंने बताया कि ये आप उसके मीनिंग ऐसे ही ऑर्डिनरीली आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक परत हटाओ तो शैलेंद्र इज टॉकिंग अबाउट द न्यू इंडिया, मोनार्की खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी आ गई है, तो राजे राजकुमार तो हैं, होंगे, अब सिंहासन वो कोई भी आम आदमी जाके बैठ सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो।
0: उनके अंदर की जो ये आग थी ना, ये उनकी हर रचना में दिखती है। एक फिल्म भुलाए नहीं भूलती और वो है फिल्म तीसरी कसम, जिसको आपके पिताजी ने बहुत दिल से बनाया था और

0: आज तक वो फिल्म हमारे जहन में बिल्कुल तरोताज़ा है, वही हीरा मन और वही सारी चीज़ें, वही राज कपूर साहब और वही गीत, उसको लेकर के कुछ बातें हम जरूर आपसे करना चाहेंगे दिनेश जी।
1: मनीषा जी, एक शॉर्ट स्टोरी थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की
0: जी,
1: तो जिस दिन उन्होंने पढ़ी, छोटी सी किताब थी
0: मारे गए गुलफाम,
1: मारे गए गुलफाम नाम की कहानी थी, उन्होंने जब पढ़ी तो वो शुरू से आखिर तक एक ही उसमें पढ़ी फ्लो में, और जैसे ही पढ़ी उन्होंने किताब साइड में रखी और एक चिट्ठी लिख दी रेणु जी को
0: जी।
1: तो एक अजीब सा, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं थी फिल्म प्रोड्यूस करने की, वो सबसे हाईएस्ट पेड राइटर भी थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो एक कहानी इतनी पसंद आई जो हमारे रूट्स हैं वो बिहार के हैं
0: जी, जी जी जी,
1: तो उनको लगा कि वो कहीं अपने रूट्स के साथ जुड़ने में ये कहानी बहुत हेल्प कर रही थी उनको, तो एक जुनून सा सवार था कि मैं इस फिल्म को तो प्रोड्यूस करूंगा ही। फिर शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीच में वो फिल्म में कुछ ज्यादा समय लग गया, जो एक साल में बननी चाहिए थी फिल्म, इनफैक्ट कुछ महीनों में बननी चाहिए
0: जी,
1: उस फिल्म को 5 साल लग गए, और जब तक फिल्म कम्प्लीट होने लगी थी तब तक सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, पर वो अकेले, मतलब उनके दिमाग में बस यही था कि ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके ही छोड़ूंगा, और जो भी था उनके पास वो सारा कुछ उन्होंने झोंक दिया उस फिल्म में, और फिल्म कंप्लीट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म शुरू में चली नहीं, तो कई लोगों का ये मानना है शायद फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उनकी डेथ हो गई, या वो बिल्कुल बात नहीं थी, जितना पैसा वो उस वक्त ले रहे थे ये 3-4 महीने में वो इजिली कवर अप कर सकते थे सारे लॉसेस, और ये कुछ महीनों की ही बात है कि सितंबर में फिल्म रिलीज हुई, दिसंबर में वो गुजरे, और मार्च या अप्रैल में नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, तब लोगों की आंखें खुली कि भाई ये इसमें कुछ तो होगा, और उसके बाद वो फिल्म जहां भी लगी है बहुत अच्छा बिजनेस किया है और लोगों को सारे गाने भी पसंद आए हैं और बहुत चली।
2: अपने बाबा शैलेंद्र की स्मृतियां बांट रहे थे उनके सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र। मनीषा जी, हम इस बातचीत को सुन रहे थे और उस दौरान फिल्म तीसरी कसम का एक गीत बार बार मन में कौंध रहा है, क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: गीतकार शैलेंद्र की अनुपम कृति सेल्यूलॉइड पर लिखी एक कविता, तीसरी कसम।

0: तो श्रोताओ, आज हमने स्मरण किया महान गीतकार शैलेंद्र को, और अब एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की बातें जिनके गीत एक जमाने में लोगों को दीवाना बना दिया करते थे, और आज भी जब रेडियो से ये गीत बजते हैं तो उस जोड़ी की स्मृति को भी हम नमन करते हैं। और जयंत जी, हुस्नलाल जी और भगत राम जी संगीतकार खयाम के गुरु थे, जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले हमने खो दिया। और इसके अलावा नौशाद साहब के भी गुरु थे हुस्नलाल जी और भगत राम जी,
1: जिनके गीतों का हुस्न देखते ही बनता था,
0: क्या बात
1: और
0: है?
1: जिनके गीतों को सुन करके उनके संगीत के सब भगत हो जाया करते थे।
0: क्या बात है। तो आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं श्रोताओं, सरगम के सितारे, हमारा एक ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था। इसके कुछ संपादित अंश आज की विविधा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, स्वर निम्मी मिश्रा का है। तो आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनी गई ये रिकॉर्डिंग।

सन 1944 में फिल्म चांद से सिने संगीत जगत में कदम रखा इस जोड़ी यानी हुसनलाल भगतराम ने इस फिल्म का गीत दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

0: वरिष्ठ फिल्म संगीतकार खय्याम, जो स्वयं संगीतकार हुसन लाल भगत राम जी के शिष्य हैं, अपने गुरु की सुरीली यादों में खो से जाते हैं और बताते हैं,
1: फिल्मी संगीत की दुनिया में पहली जोड़ी ये थी। तो दोनों मतलब शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े गुरु, और एज वेल एज उतनी ही महारत उनको लाइट म्यूजिक में, जिसमें वो ठुमरी हो, दादरा हो, गजल हो, गीत हो, तो ये मतलब बहुत बड़ी दोनों हस्तियां थे ये लोग। तो भाई मेरी खुश नसीबी ये कि मेरे गुरु थे, और मैं जो सरगम और स्वर और ताल का जो ज्ञान मुझे मिला उन्हीं से मिला, पहले स्वर सा जिसे कहते हैं उन्हीं से मिला, सरगम और सुर और सुर और ताल का, तो उन्हीं से ज्ञान मिला। दिल्ली में मुझे ये शिक्षा मेरी हुई, तो मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले, और जिनसे मतलब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तो सबको मालूम है बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन उन्होंने तो मुझे जैसे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया, तो ये उनका। और फिर धुने उन्होंने क्या सुरीली, क्या अच्छी और कैची और आसान धुने बनाई उन्होंने हर एक फिल्म में। आप उनकी कोई भी फिल्म आप बजाएंगे, आप देखिए कितना आसान और उम्दा और अच्छा संगीत,
0: मतलब सुरीले होने के साथ साथ वो बहुत सरल भी होता था।
1: जी हाँ, बहुत सरल होता था,
0: और फिर जब सरल हो सुरीला हो तो असर की तो क्या,
1: यकीनन वो मकबूल होता है और आम लोगों तक, यानी हर खासो आम तक वो पहुंच जाता है।

0: प्यार की जीत ने युगल जोड़ी को अपार सफलता दिलाई। यूं तो संगीत का गहरा ताल्लुक होता है दिल से, और फिल्म संगीत वो तो हर आम और खास की रग रग में बसता है, क्योंकि उसे सुनते सुनते ही हम बचपन से किशोर और किशोर से फिर युवा और फिर प्रौढ़ कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हुसनलाल भगतराम जैसे संगीतकारों का उम्दा संगीत हमेशा वैसा ही असरदार ताजा रहता है। योग्य पिता संगीतकार हुसनलाल की सुयोग्य संतान दिनेश प्रभाकर ने संगीत को ही अपनाया बतौर संगीतकार। पिता और गुरु की मीठी सुरीली यादें आज भी वैसी ही ताजा हो जाती हैं।
1: इस जोड़ी ने पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू एवं पंजाबी फोक को इस तरह से फिल्म संगीत में ढाला, और एक जो खास बात थी कि

0: पंजाबी ठेका, इसको शंकर जयकिशन ने भी अडॉप्ट किया, उसके बाद में ओपी नैयर जी ने भी अडॉप्ट किया, और इस तरह से कई संगीतकार हैं जो कि उनके संगीत के इन्फ्लुएंस में आए। अपने जमाने के बहुत ही बिजी संगीतकार थे, धुने तो वो दोनों भाई इकट्ठे एक साथ ही बैठ के बनाते थे, और इतने अनुबंध थे उनके कि उनको कई बार ये भी याद नहीं रहा था कि हमने कौन सी फिल्म की धुन किस तरह से बनाई, पर इतने माहिर थे कि सेट पर जाते ही जब वो ये फील करते थे कि ये धुन हम पहले भी कहीं दे चुके हैं, सेट पर ही उस धुन को एकदम चेंज कर देते थे। मैंने एक्चुअली वायलिन की ट्रेनिंग ली फादर से, और उनका हमेशा यही रहा कि पहले स्टडी करो, संगीत तो तुम्हें आ जाएगा। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े गायक भी थे और वायलिन वादक भी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जालंधर में शायद हरिवल्लभ संगीत सभा में गा रहे थे वो, तो उस समय काफी बारिश हो रही थी और सामने बड़े गुलाम अली खान साहब और कई कई लोग बैठे थे, उन्होंने राग गाया मियां मल्हार। तो जब फंक्शन खत्म हुआ, गुलाम अली खान साहब स्टेज पर आए और उनको गले मिले और बोले कि उनका नाम जैसे आप जानते हो हुसन लाल था ना
1: जी हाँ,
0: तो कि जैसा तुम्हारा हुस्न है वैसा ही तुम्हारा गाने में हुस्न,
1: वैसा ही गायन का हुस्न भी लाजवाब है।

फिल्म बड़ी बहन के साथ हुसनलाल भगतराम के संगीत का जादू चला, जो सिलसिला बना तो कई बार एक साल में ही इस जोड़ी की 8-8 फिल्में भी आईं। सन 1950 में निर्मित सावन भादों, आधी रात, मीना बाजार और गौना तो विशेष रूप से लोकप्रिय रहीं। सन 1951 की फिल्मों में अफसाना और सनम बहुत ही उल्लेखनीय हैं।

0: संगीत के क्षेत्र में पिता श्री भगत राम की ताल से ताल मिलाने की कोशिश में बेटे अशोक शर्मा।
1: वो सिर्फ

0: मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से मैंने सब शिक्षा हासिल की है। मैं तो काफी छोटा था, पर फिर भी उनके जो पीक टाइम था उस वक्त तो मैं नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें स्टूडियो में अक्सर देखा है, मैं उनके साथ जाया करता था। तो उनकी जो लगन थी काम करने की, वो बहुत देखने लायक थी, और बहुत ही, वैसे तो बहुत ही सरल लोग थे, पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे, सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे तो वो बैठ के ही धुन बनाया करते थे, कभी जैसे कभी मेरे पिता पंडित भगतराम जी बैठे रहते थे, उन्हें कुछ सूझता था तो वो अलग बैठ के धुन बना लेते थे
1: जी,
0: और फिर उन्हें बता देते थे कि भी ये हो गया है। और कई बार प्रोड्यूसर बैठ जाते थे, उनके सामने भी वो इमीडिएट धुन बना देते थे, राइटर लिखते थे।
1: अच्छा।
0: तो पहले तो ऐसे नहीं था कि आपने ट्यून दे दी और उस पे लिख दिया, इतना नहीं हुआ करता था। पहले राइटर को फ्रीडम दी जाती थी और वो अपना लिख के तभी म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे और वो उसी पे धुन बनाया करते थे। तो वो हर तरह से ही धुन बनाया करते थे, धुने काफी हैं, जैसे वो गाना है छुप छुप खड़े हो जरूर की बात है।
1: अच्छा।
0: इस तरह की जो है वो धुने बस जैसे आई बैठे के दिमाग में तो उन्होंने इमीडिएट कंपोज कर दी फिर। और उसके म्यूजिक भी देखिए, हारमोनियम का बहुत छोटा सा पीच, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है भगतराम जी ने उसमें।
1: कुछ कोई बात खास आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे हम लोगों को, श्रोताओं को?
0: जी, पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सरल भाव के थे, बहुत सीधे थे, और हमेशा संगीत में ही उनका दिमाग रहता था। और एक बात बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ लाइट म्यूजिक के ही नहीं थे
1: जी,
0: बल्कि मतलब कहने का कि सिर्फ फिल्मों के संगीतकार नहीं थे, बल्कि वो बहुत विद्वान शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार थे। वो
2: हुसनलाल जी के साथ भगत राम जी भी हारमोनियम पर शास्त्रीय रागों को बखूबी प्रस्तुत करते थे, यानी सही मायने में थी ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक, या यूं कहें कि एक दूसरे के लिए ही बनी थी।

0: शास्त्रीय संगीत में महारत बनाती है सिने संगीतकार की धुनों को और भी कामयाब और भी असरदार। संगीतकार हुसनलाल भगतराम जो थे सगे भाई और दोनों ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। हुसनलाल जी की वॉयलिन की धुन स्वर कुछ अनूठे ही लगते थे, जिनकी प्रशंसा में संगीतकार खयाम यूं कहते हैं।
1: देखिए, उनकी खास बात ये थी कि पंडित हुसनलाल जी

0: शास्त्रीय संगीत में वायलिन पर
1: जी
0: इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत उसमें वायलिन में बजाते थे
1: जी।
0: तो मतलब एक रागा को पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा वो बजाते थे किसी भी एक रागा को वायलिन के ऊपर।
1: अच्छा,
0: और ऐसी टोन वायलिन की बहुत कम सुनने में मिली पूरी दुनिया में, ऐसी टोन वायलिन की कि क्या कहने है ये, क्या मतलब कोई दूसरा विदेशी इंसान भी अगर सुन लेता था पंडित जी का वायलिन तो वो बहुत सराहना करते थे।
1: अच्छा,
0: कि वाह वाह ऐसा ऐसी टोन हमने नहीं सुनी। पंडित सुलाल जी वायलिन बजाते थे और पंडित भक्तराम जी हारमोनियम उसी तरह शास्त्रीय संगीत वो इसी तरह राग रागनियां हारमोनियम पे बजाते थे
1: जी। हाँ।
0: वो भी आधा घंटा पौना घंटा किसी राग को हारमोनियम पर बजाते थे।
1: अच्छा, और उसमें हारमोनियम और वायलिन की जुगलबंदी भी होती थी।
0: खैर उन्होंने दोनों भाइयों ने तो नहीं की
1: जी।
0: लेकिन जाहिर है जब काम करते थे दोनों दो दो हारमोनियम, मैंने देखा कि भाई दो हारमोनियम होते थे, एक हारमोनियम पंडित जी पंडित सुलाल जी के पास होता था, एक भक्तराम जी के पास होता था, दोनों भाई मिलकर काम करते। बहुत कोई चहिता शागिर्द हो तो मेरी खुशनसीबी के मुझे कभी जब वो काम करते थे, अदरवाइज जब इंसान काम करता है किसी थर्ड पर्सन को रिदमिस्ट के सिवाय किसी को पसंद नहीं करता कि उनके पास कोई बैठे, क्योंकि एक तख्लीक करना होता है, एक क्रिएटिव काम करना होता है। तो मगर मुझे अलाउड था, मैं मुझे कहते थे तू आ जा पुत्र, पुत्र आ जा, तू आ जा, काका आ जा तू इधर। तो हमारे जालंधर में ना, तो वो भी जालंधर के थे, मैं भी जालंधर का सब, तो वो कहते तू बैठ, तू न जावा। तो मैं मुझे मतलब मुझे मौका मिलता कि मैं देखता पंडित जी किस बारीकी से किस तरह सजा रहे हैं।
1: वो आपके गुरु थे तो ये तो आप जानते होंगे, तो कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे पहले तो कभी दो एक साथ संगीतकार हुए नहीं थे, उन्हीं की ये जोड़ी थी, तो उन्होंने कैसे ऐसे सोचा कि दो लोग मिलके और ये संगीतकार हम बने एक साथ।
0: देखिए ये इसके लिए तो मैं मेरी मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ उनके सामने
1: जी।
0: वो
1: हाँ।
0: बड़े मैं कैसे पूछ सकता था कि
1: नहीं, मैं पूछ मैं अपनी जानकारी,
0: मैं तो उनके सामने मैं तो कुछ, मैं तो हमेशा आपने सुना भी होगा मैं कहता हूँ कि मैं जो खयाम है उनके पांव की धूल भी नहीं है।
1: अरे क्या
0: इतने बड़े वो थे।

0: आपने उनकी बनाई किसी धुन पे कोई गाया गीत
1: है जी?
0: आपने उनकी किसी तर्ज पे कोई गीत गाया हो?
1: मैंने गाए थे।
0: हाँ, कोई खास
1: है जी?
0: कोई खास गीत जो आपको याद हो?
1: अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसे याद नहीं। पहाड़ी में इनके दो तीन गाने थे
0: जी,
1: इन्होंने फिल्म में गवाए थे मुझे।
0: अच्छा।
1: और वो इनकी लास्ट फिल्म थी। हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, लास्ट।
1: लेकिन यू सी क्या है कि कॉम्पोजिशन के साथ साथ जो मैंने इनसे विद्या ली है ना, वो बहुत वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने जो विद्या दी मुझे वो बहुत मेरे काम आई।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और कोई खास बात?
1: और इतने अच्छे जेंटलमैन, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दोनों भाई इतने अच्छे जेंटलमैन थे कि इतना अच्छा स्वभाव, इतने बड़े टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद ये लोग हमेशा हंसते रहते थे। अच्छा। हमेशा खुश रहते थे और कहा करते थे कि भी खुश रहना चाहिए। ठीक है, जो अगर भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में रहना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए, लेकिन अपना रियाज नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ जी, मतलब
1: सरस्वती माँ की पूरी सेवा इन्होंने की है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि रेडियो प्रोग्राम पे गुरुजी का मुझे फोन आया दिल्ली से कि मैं नेशनल प्रोग्राम पे गा रहा हूँ। है जी,
0: जी।
1: इन्होंने गाया, ऐसा गाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुनने वालों ने ये समझा, जो लिसनर्स थे, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने इंक्वायरीज की कि सिंगर कौन थे जिन्होंने गाया। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ तक गुरुजी ने बताया था, यहूदी मैनियन
0: जी
1: जब आए थे यहाँ, उन्होंने इनकी वायलिन सुन के उन्होंने कहा, इतना बड़ा आर्टिस्ट, ये कैसा आर्टिस्ट है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आर्टिस्ट और हमारे वर्ल्ड में ऐसा आर्टिस्ट, मैंने कभी ऐसी वायलिन सुनी नहीं, इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं ये।
0: ये तो मतलब खूबी है कि गाते भी थे और वायलिन भी बजाते थे।
1: वायलिन भी बजाते थे
0: और दोनों बराबर दर्जे की, उच्च दर, उच्च कोटि की।
1: और देखिए कि अगर 6 घंटे रियाज करते थे गाने का, इन्होंने कभी टाइम देखा ही नहीं था। मुझे लगता है 8 घंटे फिर वायलिन का करते थे, इतना मतलब भिगे हुए थे म्यूजिक में कि इनको कुछ होश नहीं रहती थी।
0: हाँ जी, आप कोई उनका गीत गुनगुना पाएंगे, उनकी बनाई तर्ज कुछ याद आ रहा है क्या?
1: उनके गीत पुराने जो थे, बहुत जो पॉपुलर हुए,
0: जी हाँ,
1: बड़े अच्छे अच्छे गीत थे, हालांकि वो फिल्मी गीत थे।
0: आप कुछ गुनगुना सकते हैं? कोई बिगड़ी बनाने वाले, चुप चुप खड़े, वो दूर जाने वाले, कितने सारे
1: मुझे याद है। मैं तो बचपन में गाता था वो। बिगड़ी बनाने वाले,

0: कि ये जो मुखड़ा है
1: जी,
0: ये बड़े गुलाम अली खान साहब बड़े खुश होते थे सुन के।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने खान साहब ने ठुमरी में इस मुखड़े को ले लिया था।
1: अच्छा।
0: मतलब इतने इंस्पायर हुए थे खान साहब।
1: अच्छा।
0: गुलाम अली खान साहब, उन्होंने पंडित जी को कहा, गुरु जी को, कि वाह हुसैन लाल जी क्या बनाई आपने तर्ज।
2: प्रसिद्ध सरोदवादिका जरीन शर्मा जो भगत राम जी की बहू हैं, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हैं।
3: संगीतकारों में वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर थे
1: जी,
3: जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि संगीत को कैसे बनाना चाहिए, फिल्म संगीत क्या है, किस दर्जे का होना चाहिए, जिसमें अमर धुने दी है, मेलोडी कभी मरती नहीं है
1: जी।
3: वो उन्होंने अपने संगीत के द्वारा साबित कर दिया है। और केवल फिल्म म्यूजिक में ही नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र बेदी जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की।

0: कई शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम दिए और शास्त्रीय संगीत में उनका फाउंडेशन इतना अच्छा था, इसीलिए वो फिल्म म्यूजिक में भी बहुत उम्दा संगीत दे पाए। उनका हर जो भी गाना देखिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से मिलता रहता था, हर एक का अपना अंदाज होता है ना, हट के गाना होता था, मेलेडी होती थी। आज भी आज सालों साल हो गए पर आज भी एवरग्रीन है, जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। तो ये तो जब तक आपके अंदर मेरिट नहीं हो ये बात कभी नहीं आ सकती, क्योंकि एक आपके पास इतनी विद्वत्ता है कि आप उसको अलग अलग अंदाज में पेश कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: जब आप किसी चीज से सीमित रहते हैं तो आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करें।
1: जी।
0: अब जिनको राग की जानकारी हो तो वो हर अलग अलग रागों के आधारित गाना बना के, तो ये सब जानकारी होने की वजह से वो सब कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: और उन्होंने हर तरह से नई नई चीजों को प्रयोग में लाया है, जैसे चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है,
1: हाँ।
0: ये देखिए तो उसमें रिदम का पैटर्न देखिए, हारमोनियम का पीस देखिए, मटके का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया।
1: जी हाँ।
0: तो ये जो बातें होती है वो हमेशा सोचते थे कि आज ये गाने में हम नया क्या चीज बनाएं। उनको अपने काम से बेहद लगन थी, ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है।
1: जी हाँ, जी
0: हाँ। आपको अपने में कितनी लगन है वो लगन काम करती है।
1: जी।
0: हर तरह से हर नए नए चीजों को प्रयोग में लाना और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लाना।
1: जी हाँ।
0: ताकि लोग उसको तारीफ करें और लोगों को भी अच्छा लगे। जितने महान थे उतना ही वो नम्र थे।
1: हाँ जी।
0: मतलब मैं तो ये को कभी मानना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि इतना विद्वान हो के इतनी नम्रता से वो बात करते थे, अपने से छोटे कलाकार को भी इतना मान देते थे जैसे उसको लगे अरे बाप रे क्या बात है।
2: सिने संगीत के पुराने सुनहरे दौर में रविवार की रात रेडियो सिलोन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, हमेशा जवां रहने वाले गीतों का कार्यक्रम। उसका शीर्षक गीत भी हुसनलाल भगतराम जी की ही तर्ज है। सन 1944 से 1954 तक के दशक में इस सफल संगीत जोड़ी हुसनलाल भगतराम का ही एक छत्र राज्य था। सन 1955 में बनी फिल्म अदले जहांगीर के संगीत की चमक की तो क्या बात थी। यूं भी कहें कि ये संगीत उनका अंतिम चमकदार नमूना था।

फिल्म प्यार की जीत का वो गीत जो अमर गायक मोहम्मद रफी के यादगार गीतों में गिना जाता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, संगीतकार हुसनलाल भगतराम की धुन का ही कमाल है।

0: ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गीत उनका अच्छा था। और फिर वो देखिए वो भी आपने वो भी गाना आपने सुना होगा ना, तूने मेरा यार ना मिलाया।
1: अरे क्या बात है, क्या बात, बहुत।
0: तूने मेरा यार ना मिलाया।

हुसन लाल भगत राम सिने संगीत आकाश की धूम केतु के समान अपनी रोशनी चमक बिखरा कर थोड़े से समय में ही चल दिए, पर दी गए ऐसी नायाब धुनी कि सिने संगीत के खजाने को जिन्होंने मालामाल कर रखा है, जिनमें से कुछ मधुर धुनी गुनगुना कर हम किसी भी पल कर लेते हैं खुद को ताजा और याद कर लेते हैं ऐसी दुर्लभ धुनों के सर्जक को।

0: संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगतराम पर केंद्रित ये सरगम के सितारे कार्यक्रम था जयंत जी, और इसकी हमने संपादित रिकॉर्डिंग आज श्रोताओं को सुनवाई।
1: अब और कुछ कहने को बचा नहीं है, समय भी बचा नहीं है, और अगली विविधा के लिए अपने श्रोताओं से वादा करते हैं कि कुछ और बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स हम उनके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रोताओं दीजिए आज्ञा, जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन, हम दोनों ही का
1: आपको नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। समाचार थोड़ी ही देर में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष

0: में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: सुन रहे थे हिंदी में समाचार, आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से।

मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे। आवारा फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आसमान की सैर कराते गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

0: प्यार है तुमसे। हसर जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन की तर्ज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
4: कौन है जो सपना

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का का चैनल है। आइए सुनते हैं चंद संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो।

0: हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: संदेशों के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गीत इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी और इसे लिखा गुलजार ने, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, पीके मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया दिना।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप विविध भारती पर सुन रहे हैं।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आज चर्चा में उनसे लगातार प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना जरूरी है जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर

0: स्थल पर इसरो की ओर से अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्र समाज विकास और मानव कल्याण पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भारत के अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की फिलॉसफी और दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया।
1: हम वेदर फोरकास्टिंग पर कितना बेहतर काम कर सकते हैं, हम डिजास्टर मैनेजमेंट में किस बेहतर तरीके से, किस प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं, हम रिमोट एरियाज को कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सारे विषयों से किस तरह से जोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ में हम गवर्नेंस को किस तरह से और अधिक प्रभावी और पीपल सेंट्रिक बना सकते हैं। भारत की इस क्षमता का आकलन हमको इसके आधार पर करना पड़ेगा, एंड दैट इज द स्पेस फिलॉसफी ऑफ इंडिया एनविजन बाय प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम साराभाई। और उन्होंने कहा कि स्पेस फॉर सोसाइटी, स्पेस फॉर डेवलपमेंट, स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम विकसित भारत की ओर, नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा रखी गई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग पर्यावरण के लिए लाभदायक है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापत्तनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संडे ऑन साइकिल पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करना और स्वस्थ जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आज देश के करीब 1800 शहरों में इसका आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 50 लाख युवाओं ने भाग लिया। ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। संबंधित जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर बनाए गए नियंत्रण कक्षों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही निकाय चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के विभिन्न मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। वहीं स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज अवकाश के दिन रविवार को भी कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले हुए हैं। झालावाड़, बारा, बूंदी, डीडवाना और उदयपुर सहित कई मंडलों में विशेष काउंटर संचालित हो रहे हैं। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ राखी, लिफाफे और पैकिंग बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने डाक के माध्यम से देश की सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा में तैनात जवानों और उनके परिवार को राखियां भेजी। रणथंभौर बाघ परियोजना की फलोदी रेंज के दूमोदा और कैलाशपुरी गांवों में सक्रिय तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ लिया है। निगरानी और रेस्क्यू के लिए 40 से अधिक कैमरा और केज ट्रैप लगाए गए। गौरतलब है कि तेंदुए के हमले में एक बच्चे की मृत्यु के बाद क्षेत्र में भय का माहौल था। उप वन संरक्षक मानस सिंह ने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिलाया। विभागों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है, ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर तो जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हुए यानी चेचक के दाग हुए, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहें या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी उसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारे एक आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है तो सिर्फ सूत काटती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को चंदा मामा परियां चांद सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई जो हकीकत लगी। आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी माँ से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा माघ पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा की खूबसूरत चंद्रमा को देखने की आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीजों को देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की चांद की सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइएगा।

गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन की बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे काल पुरुष, तारा मंडल, सप्तर्षि मंडल, आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की टॉर्च हूँ, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ही गाना है, अम्बिली अम्बावा तमारा कुंबिलील इन थोड़ू, ऐसा गाना है मेरी माँ सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नजर आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है, इसकी बानगी वे गीत है जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब है, उसके घुंघरू हैं, इसको जिस चाहे उस नज़र से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नज़र आता है तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नज़र आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह से चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नज़रिए से उसे देखते हैं। वही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पुए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है। सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था। सभी के मन पर वो राज करता है। जवां दिलों के सपनों का सौदागर है। करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कोजागरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में सजता है एक जादुई नगर जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर। कागज की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती और वो कागज के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते, कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते तो कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन उतनी ही जादुई हमारा वो गुजरा जमाना। पर वक्त की इस दौर में भी कहां कम हुआ बचपन का वो फसाना। डिग्रियां ली, दफ्तर संभाले, नाप ले दुनिया की हर डगर, पर बचपने की उन मासूम यादों ने आज भी जिंदा रखा है दिल के अंदर का वो बेफिक्र सफर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने

लिखा हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सबसे प्यारी बात इबारत की आखिरी पंक्ति है, रॉकेट और यान से चांद तक पहुंच गए मगर मन आज भी उसी चंदा में अपने बचपन वाली परियों को ढूंढता है, यही तो संगीत भी करता है, हमें बड़ा होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए हमारा बचपन लौटा देता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि माँ परियां सपने चंदा दुनिया आसमान बादल मौसम सितारे बचपन, इन वर्ड से आज के गीत हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत, और एक ऐसा गीत है जिससे सभी का बचपन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, तो बताइए किसकी आवाज में है और संगीतकार कौन है।

वचन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, रवि का संगीत। यही हमने सवाल आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी ने तो ये भी बताया कि ये गीत गीता बाली पर फिल्माया गया है, और हमारे साथी ने आशा भोसले की आवाज को भी सही पहचाना। चांद वही है, आसमान भी वही है, बस उसे देखने का वो बचपन कहीं खो गया है। पहले वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, अब पास होकर भी दिल तन्हा सा हो गया है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। तो एक साथी लिखते हैं कि आज विज्ञान चांद तक पहुंच गया, रॉकेट और यान उसकी सतह को छू रहे हैं, लेकिन हमारे मन का चांद आज भी उतना ही रहस्यमय और प्यारा है। शायद इसलिए चांद आसमान में जितना दूर है, हमारे दिल और हमारी यादों में उतना ही करीब है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस का महत्व है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। इसी दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरा था, और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की रातें जब अम्मा लोरी गाती थी, चांद के उस आंगन में परियां रोज ही आती थीं, कागज की वो कश्ती लेकर तारों पार पहुंचते थे, चंदा मामा के संग संग हम भी आसमान चढ़ जाते, कभी धूप की चादर ओढ़े, कभी छांव से आंख मिचौली, सपनों के उस मेले में थी मन की कितनी भोली झोली। आज उम्र के इस मोड़ पर भले चांद को हमने पा लिया, पर बचपन वाला जादू हमने दिल में आज भी जिंदा रख लिया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन बड़ा सा खुला आंगन, खेल खिलौने और चांद, रात खुले आसमान के नीचे बिछी खाट और दादा दादी माँ की कहानियां, तब सिर्फ कुछ मांगना नहीं था, टूटते तारों से बस चांद की चमक और उसे निहारते हुए उसकी कहानियां सुनना, कोई बोल रहा वहां परिया रहती हैं तो कोई उसकी छवि में सिमटकर बैठी बूढ़ी महिला, बस हमारी कल्पनाओं के घोड़े तभी तो दौड़ लगाते थे कि सवालों का उत्तर जो भी मिलता था सच ही लगता था। आज भी चांद हमारे जीवन की यात्राएं श्रद्धा के साथ शामिल है, व्रत त्योहार उसके बिना अधूरे। पूर्णिमा के दिन दूध में भिगोए पोहे खाने का रिवाज है, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे उस रात चांद की चमक में रखकर ठंडा करके खाते हैं।

और माँ कहती थी उस रात में जो सुई में धागा पिरो सकता है उसकी दृष्टि उतनी ही तेज होती थी। और हमने तरक्की कर ली, इस सुहाने सफर को कितना आसान बना दिया। हम उसकी जमीन पर जाने लगे, पर वो बच्चों को सुनाई गई कहानियों ने असर ऐसा छोड़ा कि आज भी धरती से चांद उतना ही हसीन लगता है। बचपन के वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन गांव छूटा, गली मोहल्ले और खुले आसमान में सोते हुए तारों को देखना और चांद की कहानियां सुनना, अब सब बदल गया है। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि अब सब बदलता जा रहा है। तो क्यों बदल रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीजें नहीं है जिसके बारे में हम बचपन में सोचा करते थे, क्यों? और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि गीत लिखते साथी कि बचपन की रातें ना बिजली से रोशन थी ना मोबाइल से, वो माँ की गोद और चंदा मामा की रोशनी से उजली थी। माँ लोरी गाते गाते जब परियों की कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद पर सच में एक मामा रहता है जो बादलों की रुई से हमारे लिए खिलौने बनाता है, रात को चुपके से आंगन में रख जाता है। हम आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि परी आएगी, उड़ते घोड़े पर बिठा कर चंदा मामा के घर ले जाएगी और माँ की लोरी और चंदा मामा की ठंडी रोशनी मिलकर हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बना देती थी जहाँ न डर था न उदासी, बस परियों की हंसी और सपनों की उड़ान थी। आज बड़े होकर समझ आता है कि वो परियां कहीं और नहीं थी, वो माँ के हाथों में थी जो लोरी गाते हुए थपकी देती थी। कितनी सुंदर बात हमारे साथी ने लिखी। और हमारे एक और साथी बचपन के सुहाने दिन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ और दादी खाना खिलाते समय सुलाते समय चंदा मामा की कहानी सुनाती थी, वो बचपन का दौर हम सभी के जीवन का अनमोल दौर होता है जो कभी भी लौट कर नहीं आता। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुहाने दौर की यादों में खो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। एक साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, दूध के कटोरी में दूध भात लेते आवा सुना करते थे हम बचपन में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं चंदा बचपन के हमारे मामा, सच चरखे वाली बुढ़िया को हम सचमुच का समझ जाते थे। और एक और साथी भी कह रहे हैं कि चांद बचपन से एक नाता है, चांद से मामा है, लेकिन चांद सिर्फ बचपन का मामा ही नहीं रहा, अपने भाई के लिए दूर देश या बॉर्डर पर बहना उसके लिए खुशी की प्रार्थना करती है। कभी करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु या प्रेम की बातें प्रेमिका अपने चांद के साथ साझा करती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि चंदा के लिए गाना वो अलग अलग सुनते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि आज के दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई थी और ये हमारे लिए गर्व का दिन था, हमारे देश भारत किसी से पीछे नहीं है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चांद यूनिवर्स का एक बहुत ही खास हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत भी उन्हें लगता है, बहुत ही रोशन है और वो अक्सर से शाम को देखा करते हैं और सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़र आता है, उसे एक अपना अच्छा चहेता दोस्त ही मानते हैं, ऐसा अंग्रेजी में इन्होंने लिखा जिसका हिंदी अनुवाद हमने करके आपको सुनवाया। हमारे एक और साथी ने लिखा निम्बुड़ियाँ चाम झाड़ा मागे चंद्र झोपला गबाई, आज माझा पाड़साला झोप का ग इतना ही। ये मराठी लोरी हम बच्चों को सुनाते थे और ऐसा ही हमारे एक और साथी ने भी इसी लोरी को याद किया है। लेकिन हमने याद क्या किया है, किसी की याद कब आती है चांद को देखकर, वो गीत आपको सुनवाते हैं। आपको पहचानना है आवाज किसकी है और

जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना कितने नजदीक थे प्रकृति के, हम कितने खुशहाल थे हम। स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए काम था, इस फोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तू चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है, अगर आप, अब तो गूगल सर्च का ज़माना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगी। वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में हमें चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी,

ए चंदा मामा, आरे आवा, बारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी के वो ही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है। बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रही कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती

0: दुम तकत दुम तकतन्या।
1: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के। बच्चों को प्यार करती, कहती चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है। चांद सी महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे। कभी विभिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्निल संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सर रखकर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ममता, माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है, और बच्चों को संभालना, रूठना, मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ, प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज़ में है और किसने लिखा।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है। तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है, अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है, एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारे और साथी कहते हैं कि बहनें चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं, बहनें चंदा ही कहती हैं, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज

आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं, जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे, बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कहने के बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेट यान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या। गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है, वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारस मणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है, वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं, क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, कि दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा खाती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए तो रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहां ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकल कर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं, और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई MBBS में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे और साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला बिखेरना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश है जो हर रात हमें ये विश्वास दिलाती कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी और हमें ये भी बताई कि क्या आपने कभी सफर किया है चांद के साथ। जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं तो कई बार हमारी नज़र चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहा है, तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथ ही बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भी कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया

0: एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है।

0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री

0: मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
1: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रहीं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया दिना।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्म

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत, दीवाना फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ से इस गीत को सुन ले हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। तो सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफ़ इरफानी की बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी मिशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अमोला महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा, अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु, ऋषु, अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णाराव नायडू, अमृता और संतोष, मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा और जूनातार फैल, अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से और

गीत कोई फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतला नगर से अर्पा पैरी पार्वती राधा शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मधु आयाम और प्रतीक कुमार ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता भोलू नीलू विशालराज और वंशराज बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े सुभाष दिगंबर राजेश गड़े शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म का। ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: तो आए के माने। अरे चीतक तो हमारी सहन के सामने ही रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना। कितना बड़ा है ये ट्रक। कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल। कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन, बचके जरा बचके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय। तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय। टॉय के माने खिलौना। बी ओ वाई बॉय।
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्राकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय, बॉय के माने लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट ना जाए हाथ से।
2: को छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रहे हैं। बी ओ वाई टॉय, टॉय के माने लड़का। टी ओ वाई बॉय, बॉय के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है रे?
3: टी ओ वाई बॉय।
0: टी ओ वाई बॉय होता है क्या?
3: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टी ओ वाई
0: टॉय होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं।

0: फिर क्यों कह रहे थे?
1: मैं साइकिल को देख रहा था।
0: साइकिल? कौन सी साइकिल?
1: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
0: ये किसकी साइकिल है?
1: पता नहीं।
0: तुम्हें चलानी आती है?
1: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
0: मुझे चलानी आती है।
1: मुझे सिखाएगी?
0: ये साइकिल मेरी ही है।
1: मुझे इस पर बैठने देगी?
0: तुम्हारा घर कहाँ है?
1: वो सामने। तुम्हारा?
0: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
1: तो?
0: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
1: कब?
0: पता नहीं।
1: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
0: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
1: तो?
0: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
1: कब? मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। अरे मैं तुम्हें ही देख रहा था।
0: झूठ।
1: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
0: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
1: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे?
0: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
1: हाँ, तुम्हारी?
0: मेरी मम्मी भी देखती है।
1: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
0: मेरी मम्मी तो फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
1: हाँ, मैं समझाता, तुम भूल ही गई होगी।
0: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
1: वो क्या होता है?
0: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
1: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
2: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
0: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
1: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: मुझे मालूम है, मेरी मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
0: हाँ, मेरे भी।
1: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
0: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
1: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
0: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब बैठो सीट पर। ओफो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
1: अच्छा, ले लिया।
0: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा, छोड़ू?
0: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो ऐसे।
1: ऐसे?
0: तुम तो डरते हो, डरपोक कहीं के।
1: नहीं तो?
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी। वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
1: अब धक्का दो ना।
0: हैंडल ठीक से थामना।
1: अच्छा,
0: देखो मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
1: हाँ। गो।
0: गो।
1: गिरा।
0: अरे तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना।

0: भी स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
1: तब हम खिड़की से अंदर आते
0: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
1: क्यों?
0: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं, शाबाश, आगे चलो आगे चलो। और आगे से मैडम डांटती है, पीछे चलो पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
1: क्यों, उसे क्या हुआ?
0: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी। मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
1: फिर
0: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा, शर्ट पर दाग क्यों है, बैड बॉय। फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा, ना ड्राइवर से।
1: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
0: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देखकर हंसते। अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
1: हाँ थे तो?
0: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनके मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
1: उन्होंने शादी की होगी।
0: शादी? तुम्हें कैसे पता?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
0: अलग? अलग क्या?
1: ओफो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। BOY टॉय। अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
0: तुम्हें कैसे पता?
1: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया। झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी। मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
2: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
0: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
2: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
2: और तुम?
0: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
2: डरपोक डरपोक,
0: खुद शर्मीली नहीं
2: है? नहीं, तुम तो

0: अब तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए,
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट ला के दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोल कर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है, बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूँगा।

0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियाँ थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूँगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूँगी।
1: क्यों,
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूँगा ऐसे।
0: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चुआ ले जाएगा।
1: खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना।
0: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
1: नहीं तो, मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
0: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
1: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
0: तो चलो फिर।
1: चलो,
0: चलो।
1: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
0: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है। ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
1: अगर ये सचमुच की कार ही होती
0: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
1: जब मैं देता तभी ना, हम खुद इसमें घूमने जाते।
0: हाँ, कार मैं चलाती।
1: अरे, लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
0: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
1: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
0: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
1: चल पौधों को सींचेंगे।
0: वो क्या होता है?
1: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
0: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
1: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
0: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
1: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो आओ,
0: चलो आओ। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
1: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे, ये बुलबुल तो मर गई।
0: कहाँ?
1: यहाँ तो आओ।
0: अरे, ये तो वही बुलबुल है।
1: हाँ, वही जिससे वो अलग हो गए थे, अलग मकान में।
0: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
1: अब क्या करे इसका?
0: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कही की?
0: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी।
2: झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मूठी उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था, फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
0: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
1: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
0: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
1: हाँ, वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
0: तुम कहाँ जा रहे हो?
1: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
0: रुमाल?
1: हाँ, डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
0: डैडी मारेंगे।
1: वो कुछ नहीं कहेंगे।
0: झूठ
1: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बराबरी का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
0: क्यों?
1: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
0: अच्छा, लपेटो फिर।
1: ना, तुम लपेटो।
0: क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
1: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
3: नहीं, मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
0: अच्छा, ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
1: लो।
0: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
1: मुझे भी।

0: पहले ही आ गई?
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाचित से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को, मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए है ना,
0: उससे क्या होता है?
1: मामा जी की शादी है।
0: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
1: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
0: क्यों?
1: अफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
0: फिर?
1: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
0: मुझे भी नहीं।
1: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं। मैं नहीं डरती वरती पापा से। झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे। तुम डैडी से डरते हो?
0: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
1: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे। TOY
1: बाय।

0: मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखें।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ,
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती, मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: मैं तुझसे नहीं बोलता, कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना कांच कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करते हैं ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।

0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ,
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे
1: मम्मी डैडी के बगैर ही।
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुड्ढी बुलबुल जो मर गई, नहीं उनकी।
1: आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
0: जाओगी तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना, ये तुम रखो।
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, कूद खेलना, ऐसे ऐसे ऐसे।
2: Thank you.

0: दो फूल जूही के। अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्रे जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूँ तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा। क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ, सब कुछ खिलाफ विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का ये की जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद।
1: वाह वाह,
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना
1: ये बात,
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं
1: जी जी,
2: पर मुझे तो वहीं जाना था। तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह।
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूँ और आप जवाबदेह है। उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
2: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मान्य नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां की शुरुआती दिन कैसे थे?
2: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
2: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, वन प्लस वन का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा वन वन एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
1: जी।
2: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूँ और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
2: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है?
1: वाह,
2: तो मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है एनएसडी सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट

0: शख्स के लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी।
0: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्रे संभालो, अब कब वापस जाओगे तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे का स्वागत आगत। तो वहां रख के मैं चला गया तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके।
0: और उनका नाम था अनामिका हक्सर।
1: ओ हो घोड़े को जलेबी
0: जिन्होंने आगे चल के फिल्म। मेरी क्लासमेट जो पीएन हक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, इलीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहां से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग
0: नहीं, नहीं वो नहीं बता उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों भी, दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है।
0: और ये मुंबई में ही रहती है
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे।
0: ठीक है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।

0: इश्क मोहब्बत प्यार।
1: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
2: नहीं, सारा ही तूफानी होता है। एक्चुअली पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
3: जी जी,
2: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
3: अरे गजब,
2: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
3: वाह वाह,
2: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं।
3: जी,
2: तो इसीलिए मैंने मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई, तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
3: वाह वाह वाह,
2: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
3: क्या बात,
2: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ये आप योगा कर रहे हो, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए है, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे है। उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
3: जी,
2: और कारंजी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए, और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
3: वाह
2: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड की ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहाँ आना हुआ, और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहाँ आई तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है, उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का
3: जी।
2: वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे, पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया,

0: अपनी अपनी, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर चार दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा। देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं, फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे हैं, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का, हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमा वडन सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारंजी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ आप अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर अच्छा। ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी

0: इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्री राम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजीस तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहाँ मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद।
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहाँ रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है, मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना, कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखू।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं है, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर देख के च-

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: सुषमा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है। अभी सीनियर बैच में देखिए, आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे। जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल, उन्होंने लिखी
0: हुई
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज में होन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है। वो हिमानी शिवपुरी है,
0: वाह,
1: जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरश्री है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राज किरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक बांटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था उड़ीसा का, पर वो अभी भी वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। मीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपने तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
0: जी,
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि

0: मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभव था ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का ये कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो 2 या 3 ही बैच के साथ रहा और सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के 2 वजह हैं। एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है
1: जी।
0: इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे। मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझवारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची अदा मराठी में
1: जी,
0: या मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और 2 लाइट है और 2 एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात।
0: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां 2 फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशर भाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने धोप दिया, 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं
1: एक्स्ट्रा
0: है,
1: थे
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में की,
1: बहुत इंटेंस नाटक है
0: और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक

0: लास्ट हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है, और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक के, वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक्ट को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक्ट, सो दिस टाइम आई वांट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करी है। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रजमोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह,
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो, और उसके जो अर्थ के, भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली। और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली ले लिया, आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
0: चेंज की। मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस,
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा।
1: जी, यहां एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे। उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने दो

0: ट्वाइस थे।
1: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
0: एक दिन पहले मैं वापस लौटा, फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
1: जी,
0: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएचडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपरेटरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
1: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते,
0: अलग दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
1: जी
0: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपरेटरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
1: जी,
0: और वहां पर एनएचडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है, आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की, बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
1: जी,
0: प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
1: अरे गजब,
0: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहाँ जाना है आपको, तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
1: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
0: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रहना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली अहलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
1: बाप रे,
0: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों, मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी राजस्थान उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं।
1: गजब,
0: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड़ डोमिनेशन है कल्चर में, तो एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं लेकिन मुझे द्रविड़ कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
1: जी,
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो, उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है, तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो

0: मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है।
1: हाँ,
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम।
1: अच्छा,
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम। तैयम का मतलब है देव।
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन है।
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्र कर रहा है और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती।
1: इतना बड़ा है वो,
0: इतना ऊंचा है, और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दूधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका सब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है
1: ओके,
0: तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है, वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है। तो तीन महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गाँव उसके सामने नतमस्तक हो

0: होता है।
1: अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारी यहाँ होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम, और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
0: और
1: 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। ऐसा काम जो करता है, और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए,
0: आस्था है,
1: आस्था है उसके पीछे, इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है
0: जी।
1: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए, तो ये वो भगवान निकलता है।
0: अच्छा,
1: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
0: वाह,
1: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
0: जी, जी, जी।
1: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
0: जी।
1: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है, ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर,
0: एक संगम हो रहा है।
1: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग
0: जी।
1: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया, या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं, हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियाम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, इस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे

0: मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों के।

नमस्कार, मैं आपकी रेडियो सखी पायल आप सभी नए श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम फुलवारी में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बात करते हैं आपके सपनों की, आपकी जिज्ञासाओं की और उन छोटी छोटी चीज़ों की जो आपकी दुनिया को और खूबसूरत बनाती हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पसंदीदा विषय यानी कि फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो जवाब में कोई गणित बोलेगा तो कोई विज्ञान, किसी का जवाब हिंदी या अंग्रेजी होगा तो किसी अन्य का सामाजिक विज्ञान या कंप्यूटर्स, शायद किसी का जवाब चित्रकला हो, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर किसी बच्चे का जवाब हो कि मुझे तो छुट्टियां पसंद हैं। छुट्टियों की नहीं, पर आज हम बात करेंगे आखिर कोई भी विषय हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कैसे बन जाता है। बच्चों सोच के देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को हमारा फेवरेट इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें हमारे या तो नंबर अच्छे आते हैं या फिर इसलिए कि वो सब्जेक्ट हमें अच्छी तरह से समझ आता है या फिर वो हमें आसान लगता है या फिर इसलिए कि उस विषय में हमें अपने सपनों की झलक दिखाई देती है। शायद इन्हीं सभी सवालों के जवाब में थोड़ा थोड़ा सच छिपा है। बच्चों दुनिया में हर इंसान अलग है और सबकी पसंद भी अलग अलग हैं। किसी को आम पसंद है तो किसी को सेब, किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को बैडमिंटन, किसी को कहानी पढ़ना या फिर चित्र बनाना पसंद है। ठीक इसी तरह हर बच्चे की विषय संबंधित पसंद अलग अलग हो सकती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आपके और आपके दोस्त की पसंद अलग हो तो किसी की भी पसंद को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। हर बच्चे की प्रतिभा अलग होती है, इसलिए अपने पसंदीदा विषय को पहचानना वास्तव में अपने भीतर छुपी रुचि को पहचानना भी है। गणित वो विषय है जो बहुतों के माथे पर तनी चिंता की लकीर है और किसी के कॉन्फिडेंस का कारण। गणित हमारे चारों ओर है, जैसे सुबह घड़ी में टाइम देखना गणित है, बाजार में सामान की खरीदी करना

0: भविष्य को दिशा जरूर दे सकती है, लेकिन आपका भविष्य केवल एक विषय से तय नहीं होता। रुचियां बदल सकती हैं। आज मैथ्स डिफिकल्ट लगती है तो संभावना है कि कल वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। तो अपने आप को सीमित ना करें, सीखते रहिए बच्चों, खोजते रहिए व कोशिश करते रहिए। तो बच्चों याद रखिए पांच जरूरी बातें। पहली बात, अपनी पसंद को पहचानिए। आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है ये समझिए। दूसरी बात, कठिन विषय से भागिए मत, अभ्यास करने से कुछ भी आसान हो सकता है। तीसरा, सवाल पूछिए, जिज्ञासा को मत दबाइए। चौथी बात, अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिए। किसी और का तेज दौड़ना आपकी धीमी शुरुआत को असफल नहीं बनाता। और पांचवी बात, सीखने का आनंद लीजिए। पढ़ाई केवल जीवन समझने के लिए है। तो आइए इसी संदर्भ में करते हैं बातचीत। आज उपस्थित है हमारे साथ एक नन्हे श्रोता, आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम आदि है।
0: अच्छा, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो आदि?
1: मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: स्कूल जाना पसंद है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो स्कूल में एक बात बताओ, जब इतने सारे पीरियड्स लगते हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते होंगे, है ना? तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है?
1: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स।
0: क्यों? मैथ्स ही क्यों?
1: क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और उसको करने में बहुत मज़ा आता है।
0: और ऐसा भी कोई सब्जेक्ट है जिससे आपको डर लगता हो?
1: हाँ, मेरे को SST से बहुत डर लगता है क्योंकि उसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है।
0: अच्छा, और भी आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है?
1: हाँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है।
0: साइंस भी है? मतलब मैथ्स भी और साइंस भी? वाह, साइंस क्यों पसंद है आपको?
1: क्योंकि उसमें मेरे को एक्सपेरिमेंट्स और नई चीज़ों की जानकारी लेना बहुत ही पसंद है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैथ्स भी पसंद है और साइंस भी पसंद है। और मैथ्स करते समय आपको कभी डर लगा है?
1: लगता तो है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। मैं हमेशा उसको समझने की बहुत कोशिश करता हूँ और रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करता हूँ।
0: बिल्कुल ठीक है बेटा, यही तरीका है मैथ्स को ढंग से करने का, क्योंकि मैथ्स रोज़ पढ़नी पड़ती है।
1: मेरी अच्छा दीदी, आपसे एक चीज़ पूछूं?
0: हाँ पूछो।
1: ये जो साइंस और मैथ्स, ये दो जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, वो मेरी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में काम आ सकते हैं?
0: बिल्कुल आ सकते हैं। आप बेटा ये देखो ना कि रोज़मर्रा का जीवन जो हम जीते हैं उसमें मैथ्स हमारे चारों तरफ है। अब चाहे आप कुछ खरीदने जाएं मार्केट में तो आपको पैसों का हिसाब किताब करना होता है। फिर उसके अलावा अगर आप कभी जैसे घर की बजटिंग हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में मैथ्स काम आती है और हम उसी चीज़ से हमेशा सराउंडेड रहते हैं। और रही बात साइंस की, तो साइंस भी बिल्कुल हमारे आसपास है। घर में हर, अब जैसे मान लीजिए दूध से दही जमाना है तो वो भी जामन दे के जमाया जाता है, उसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो साइंस है। तो हमारे आसपास मैथ्स और साइंस बिल्कुल चलता रहता है, हमारे जीवन के बिल्कुल साथ साथ चलता है।
1: अच्छा, थैंक यू दीदी, आपने मेरे को ये सब बता दिया।
0: आपको पता है बेटा कि हर सब्जेक्ट, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, हर रंग की अपनी ब्यूटी है और अपनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरह मैथ साइंस के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो सब ज़रूरी भी हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। हर सब्जेक्ट हमारे व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ विकसित करता है, कोई ना कोई आस्पेक्ट हमारी लाइफ में विकसित करता है। इसीलिए हर सब्जेक्ट को पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना है।
1: अच्छा
0: ठीक है, तो अब सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट्स पे ही नहीं, हर सब्जेक्ट पर आप ध्यान भी दें और मेहनत भी करें।
1: अच्छा, धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? नहीं झुमके
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन

0: इंजेक्शन।
1: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: इसी के साथ बच्चों कार्यक्रम में अब वक्त है मनोरंजन का, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं पहेली टाइम की आज की पहेली। आज की पहेली है पानी में पैदा हुआ पानी में गुम हो जाता है, भोजन से मगर मेरा गहरा नाता है। तो इस पहेली का आप सोचिए उत्तर, तब तक आइए सुनते हैं ये गीत।

पहेली का उत्तर है नमक। अब वक्त है बच्चों आज की कहानी का। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी राजकुमारी की कहानी। कई साल पहले हिमालय की गोद में बसा था एक सुंदर सा राज्य मयूरगढ़। यहाँ के पहाड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलते, नदियाँ गाती और हवा में मिठास घुली रहती। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या के घर एक नन्ही सी राजकुमारी का जन्म हुआ।

पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। शंखनाद हुआ, मिठाइयां बटी और महल में भव्य उत्सव मनाया गया। राजकुमारी का नाम रखा गया अरुंधति। प्यार से सब उसे आरू बुलाते। आरू की आंखें चमकीली थी और उसका हृदय दया से भरा था। बचपन से ही वो जिज्ञासु थी। वो बागों में तितलियों के पीछे भागती, गायों को चारा देती और तालाब में कागज की नावें तैराती। जब भी कोई महल का सहायक बीमार पड़ता तो उसके लिए खुद खाना और दवाई लेकर जाती। कोई पक्षी या जानवर बीमार पड़ता तो अपने छोटे छोटे हाथों से सहलाती। लेकिन रानी सौम्या आरू को लेकर दिन रात चिंतित रहती। उन्हें लगता कि जब आरू बड़ी होकर रानी बनेगी तो उसे राजनीति, युद्ध और प्रशासन जैसे कठिन विषय सीखने होंगे। उन्होंने विद्वान शिक्षकों को बुलाया, पर आरू की रुचि किताबों में कम और प्रकृति में ज्यादा थी। वे घंटों जंगलों में भटकती, पक्षियों की आवाज सुनती और अपने छोटे से संसार में खुश रहती। एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ी महिला आई। उसकी साड़ी फटी थी, पैर नंगे थे और चेहरा भी थकान से ढलका हुआ था। वो द्वारपालों से बोली, मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। मेरे गांव में सूखा पड़ा है और मेरी बेटी बीमार है, हमें मदद चाहिए। द्वारपालों ने उसे धक्का देकर भगाने की कोशिश की, राजा व्यस्त हैं, यहाँ से चली जाओ। आरू महल के झरोके से ये सब देख रही थी। उसका छोटा सा दिल दुख से भर गया। वो दौड़ती हुई नीचे आई और बूढ़ी महिला के पास बैठ गई। दादी, आपको भूख लगी है, आप मेरे साथ चलिए। वो उसे महल की रसोई में ले गई, उसे खाना खिलाया और एक नई साड़ी भी दी। आप राजा से नहीं मिल पाई, पर मैं राजकुमारी हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। ये बात आग की तरह पूरे महल में फैल गई। रानी सौम्या बहुत नाराज हुई, आरू तुमने बिना अनुमति महल की मर्यादा तोड़ी है। लेकिन राजा विक्रम सिंह मुस्कुराए, बोले, मुझे लगता है हमारी आरू में सच्ची रानी की झलक है। वो नियमों से नहीं, दिल से सोचती है। समय बीता, आरू 13 साल की हो गई। एक दिन अपने गुरु के साथ वो जंगल की सैर पर निकली। तभी उसने देखा कि कुछ सैनिक घायल हिरण का पीछा कर रहे थे। हिरण कांप रहा था और उसकी टांग से खून बह रहा था। रुक जाओ, आरू ने चिल्लाकर सैनिकों को रोका। ये शिकार नहीं, एक जीव है, हम इसका इलाज करेंगे। आचार्य ने समझाना चाहा कि राजकुमारी, राज के लिए भोजन और सुरक्षा जरूरी है, हर बात को भावनाओं से नहीं देखा जाता। तो आरू बोली, लेकिन हर जीव का जीवन तो जरूरी है। हम शक्तिशाली हैं और कमजोर की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आचार्य अचंभित थे। वो बोले, आप में सच्चे शासक के गुण है आरू। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद मयूरगढ़ पर बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज कौंडलपुर ने अचानक हमला कर दिया। राजा विक्रम सिंह घायल हो गए और सेना

0: और कमजोर की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आचार्य अचंभित थे। वो बोले, आप में सच्चे शासक के गुण हैं आरु। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद मयूरगढ़ पर बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज कौंडलपुर ने अचानक हमला कर दिया। राजा विक्रम सिंह घायल हो गए और सेनापति भी मारे गए। रानी सौम्या के साथ साथ पूरे महल में भय का माहौल छाया था। मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। किसी ने आत्मसमर्पण की बात की तो किसी ने भाग जाने की। तभी आरू खड़ी हुई और बोली, ना हम झुकेंगे और ना ही भागेंगे। मैं खुद युद्ध में जाकर सैनिकों का साथ दूंगी। सभी हैरान थे। आरू बोली, राज्य की रक्षा के लिए उम्र नहीं साहस चाहिए। राजा विक्रम सिंह की आंखों में गर्व और आशीर्वाद था। आरू ने युद्ध की योजना बनाई। उसने गांव-गांव जाकर वीरों को एकत्र किया। महिलाओं को सैनिकों का भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई और बच्चे सैनिकों को तीर कमान ले जाकर देने लगे। पूरा राज्य एकजुट हो गया। युद्ध भयंकर था। दुश्मन भी हैरान था कि एक साधारण सी बालिका युद्ध का नेतृत्व कैसे कर रही है। पर आरू साधारण नहीं थी। उसके पास प्रजा का प्यार और विश्वास था। 3 दिनों युद्ध चलने के बाद अंततः मयूरगढ़ विजयी हुआ। राजा विक्रम सिंह ने आरू को गले से लगा लिया। आरू के हाथ मयूरगढ़ की पागडोर सौंपी गई। उसने अस्पताल बनवाए और प्रकृति महोत्सव की शुरुआत की, जहां लोग अब पेड़ लगाते थे और जानवरों का शिकार नहीं बल्कि उनकी देखभाल किया करते थे। आरू ने सिखाया कि सच्चा शासक वही है जो गरीब की पुकार, बच्चों की बात और पशु पक्षियों की चुप्पी को समझता है। सच्ची शक्ति बच्चों तलवार में नहीं बल्कि करुणा, साहस और न्याय में होती है। तो ये थी बच्चों साहसी और करुणामयी आरू, राजकुमारी आरू की कहानी।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: इसी के साथ बच्चों हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। बच्चों, क्या आपने कभी अपने मम्मी या पापा के साथ मार्केट में जाके फल या सब्जी खरीदी है? अगर आप गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ फल तो ठेली पर नॉर्मली रखे होते हैं और वहीं कुछ फल ठेले पर सजा कर रखे जाते हैं और उनमें स्टिकर्स भी लगे होते हैं। पर क्या आप स्टिकर्स का मतलब जानते हैं? नहीं जानते तो आइए जानते हैं कि इन स्टिकर्स का मतलब क्या होता है। इन स्टिकर्स को देखकर ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि स्टिकर वाले फ्रूट्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी या फिर इम्पोर्टेड फ्रूट्स होंगे। पर इस सोच का दुकानदार जमकर फायदा भी उठाते हैं और ग्राहक से अच्छे खासे दाम वसूलते हैं। लेकिन आखिर इन स्टिकर्स को लगाने का मतलब क्या है? सच तो ये है कि इन स्टिकर्स का ना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई लेना देना है बच्चों, और ना ही फलों की कीमतों से, बल्कि ये सीधे तौर पर आपकी सेहत से जुड़ा है। आइए जानते हैं कि ये स्टिकर्स हमारी सेहत से कैसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर सेब या संतरे पर 4 डिजिट का स्टिकर लगा देखें तो उसे खरीदने से पहले जरा सावधान हो जाइए। 4 अंकों के इन स्टिकर्स पर नंबर भी 4 से ही शुरू होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे फलों को उगाते समय कीटनाशक और केमिकल्स का यूज किया गया है। ये फल आपको सस्ते तो मिल सकते हैं लेकिन सेहत कम और नुकसान ज्यादा है इनमें। कुछ फलों पर 5 डिजिट्स के स्टिकर्स लगे होते हैं जिनके नंबर की शुरुआत 8 से होती है, जैसे 8, 2, 1, 3, 1 वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि ये फल नेचुरल नहीं है, इन्हें लैब में विकसित किया गया है। हेल्थ के हिसाब से ये फायदा तो देते हैं पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर कौन से फल खरीदने चाहिए? आपको खरीदने हैं बच्चों 5 डिजिट

चुटके स्टिकर वाले फल जिनका नंबर 9 से शुरू हो रहा हो, 9 नंबर वाले फलों को बिना केमिकल और पेस्टिसाइड्स के ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। इन फलों की कीमत थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होती है, पर ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट टाइम जब आप मम्मी पापा के साथ फ्रूट्स खरीदने जाएं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और अपने मम्मी पापा के साथ भी ये जानकारी ज़रूर साझा करें। इसी के साथ बच्चों, एक बार फिर वक्त है मनोरंजन का, आइए सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ बच्चों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आजकल सेल्फी का जमाना है, तो जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम फुलवारी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। हमारे युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

ये वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दोस्त ऋचा मीना एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मुश्किलें हमारी जिंदगी में क्यों ही आती हैं? सब कुछ ठीक चल रहा होता है लाइफ में, फिर अचानक एक नई परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, हमें इसको एक जरा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। कठिन समय हमें रोकने नहीं आता, वह हमें हमारी अपनी ताकत से मिलवाने आता है। जब तक तूफान नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर कितना मजबूत पेड़ खड़ा है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, बस अब मैं थक गया हूँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारी सबसे बड़ी परेशानी के पीछे छिपी होती है। सोचिए उस पत्थर के बारे में जिसे लगातार चोट मिलती है, हर चोट उसे तोड़ती हुई लगती है, लेकिन वही चोट धीरे धीरे उसे एक खूबसूरत मूर्ति का आकार दे देती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आज की परेशानी शायद आपको कमजोर कर रही हो, लेकिन हो सकता है यही परेशानी कल आपको इतना मजबूत बना दे कि वही चीज जिससे आज आप डर रहे हैं कल आपके लिए एक कहानी बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज का दिन मुश्किल लग रहा है तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? क्योंकि हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन हालातों के सामने हमारा रवैया वो हमारे हाथ में जरूर होता है। गिरना कोई हार नहीं है, थक जाना भी हार नहीं है। हार तब होती है जब हम उठने की कोशिश छोड़ देते हैं। इसलिए अगर रास्ता कठिन है तो थोड़ा धीरे चलिए, रुकिए मत। याद रखिए, हीरा भी दबाव में बनता है और इसी तरह इंसान भी। हो सकता है ये आपकी जिंदगी का कठिन दौर हो, लेकिन आपकी कहानी का एक खूबसूरत मोड़ बनने वाला हो। तो मुस्कुराइए, खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि शायद ये मुश्किल समय आपको रोकने नहीं आया, या आपको बताने आया है कि आप जितना खुद को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। चलिए, इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता हमारे एक यंग एनवायरमेंटलिस्ट युवराज प्रधान जी के साथ। दोस्तों आज की हमारी बातचीत थोड़ी खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने ये साबित किया कि बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं बल्कि सोच और संकल्प मायने रखता है। अलवर के युवा युवराज प्रधान पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, जन जागरूकता और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी यह यात्रा उस समय शुरू हुई जब वे महज 8वीं कक्षा में थे। आज वे न सिर्फ पौधारोपण अभियानों से जुड़े हैं बल्कि युवाओं और विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण को लेकर

0: जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं। और उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से भी नवाजा गया है, जिनमें इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यंगेस्ट चेंज मेकर एम्बेसडर अवार्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स जैसे अवार्ड शामिल हैं। तो चलिए आज उनकी इस पूरी यात्रा के बारे में जानते हैं। तो युवराज, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, और मैं आकाशवाणी अलवर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो युवाओं की आवाज को आगे तक लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो युवराज, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से आपकी ये पूरी यात्रा शुरू हुई। आप उस समय सिर्फ 8वीं कक्षा में थे, ऐसा क्या देखा या क्या महसूस किया जिसने आपको इतनी कम उम्र में पर्यावरण के लिए काम करने की प्रेरणा दी?
1: जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी, मैं 8वीं कक्षा में था और 8वीं कक्षा का व्यक्ति बच्चा कुछ शायद इतना नहीं सोच पाता कि वो पर्यावरण के लिए कुछ कर दे, और शायद मैं भी नहीं सोच पाया था। उसके पीछे एक घटना थी और उस घटना ने मुझे कुछ सिखाया। घटना क्या रही थी, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, COVID-19 चरम सीमा पर था और खतरनाक तरीके से COVID-19 बढ़ रहा था। लगातार खबरें सुन रहे थे कि आज जो है ये व्यक्ति नहीं रहा, कल ये नहीं रहा, तो किसी का माता किसी का पिता और तमाम इस तरीके से खबरें आ रही थी। और उनको खबरों को देखकर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, अगर हम वे माने तो ऑक्सीजन की कमी लोगों में खल रही थी। और मेरे ही पड़ोस में एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी दो बच्चियाँ थी। जो मौत हुई उसका सबसे बड़ा कारण था ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाना, इस कारण से उस व्यक्ति की मौत हो गई। और मुझे लगा कि ऑक्सीजन का जो सुचारू रूप कहीं से है तो वो है पौधा लगाना, पेड़ लगाना। मैंने पेड़ लगाना शुरुआत करी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ झकझोर हुई कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने ये सोच लिया कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और आज तक हम पौधारोपण कर रहे हैं।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो युवराज, हम अक्सर सुनते हैं कि एक व्यक्ति क्या ही बदलाव ला सकता है, लेकिन आपने अकेले शुरुआत करके एक टीम खड़ी कर दी और आज वो टीम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काम कर रही है। तो आपके लिए वो पहला कदम कितना मुश्किल रहा?
1: देखिए, अगर पहले कदम की बात करें तो हमेशा आप कुछ भी स्टार्ट करें वो मुश्किल आती ही आती हैं, लेकिन मेरे साथ जो भी मेरे लाइफ में हुआ वो कोई उसके पीछे कंडीशन नहीं थी कि ये होगा। ये मेरे साथ जो भी हुआ वो अनकंडीशनल था कि क्या होने वाला है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी टीम खड़ी करूंगा, क्या करूंगा। मैं केवल एक पौधा लगाता था और पौधा आज पूरे देश में लग रहा है। और वो किस तरीके से लगा मैं आपको बता दूं। आप कहीं भी अगर आप इतिहास की बात भी करें तो चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो गांधी जी क्यों ना हो, अकेले अकेले चलते गए, कारवा अपने आप बढ़ता चला गया। तो यही चीज मेरे साथ भी कहानी थी कि भाई मैं शुरुआत तो मैंने अकेले की थी, लोग जुड़ते चले और आज धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है।
0: जब लोगों ने देखा कि एक 8वीं कक्षा का बच्चा पौधा लगा रहा है, एक पहल शुरू कर रहा है, तो लोग उसमें जुड़ते चले गए।
1: नहीं, बहुत नेगेटिव लोग भी मिलते थे कि, और एक तरह का व्यक्ति तो हमेशा मिलता था जो कहता था ये पौधा कौन सा है, ये पौधा मत लगाइए, ये वाला लगाइए।
0: जी जी जी।
1: इसके केयर भी करते हो या नहीं करते, चाहे उसने जीवन भर पे पौधा लगाया हो चाहे नहीं लगाया हो, बट डेफिनेटली वो ये चीज कहता था।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: ये चीज मुझे कहीं ना कहीं खलती थी, लेकिन आज सक्सेसफुली हम ये काम कर रहे हैं।
0: तो युवराज, जैसा भी आपने कहा कि लोग पूछते थे कि क्या आप उसकी केयर भी कर रहे हैं, तो युवराज हमने भी देखा है पौधा रोपण की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना बहुत आसान है, लेकिन उस पौधे को महीनों बाद जाकर देखना और उसकी हालत जानना, क्या आप ऐसा करते थे? कोई ऐसा पौधा याद है जिससे आपकी कोई खास इमोशनल कनेक्शन हो, ऐसा कोई पौधा हो जिसकी आपने बहुत खास देखभाल की हो?
1: जी बिल्कुल, जिस प्रकार आपने कहा, और मुझे लगता है आपने मुझे मेरा पास्ट याद दिला दिया, और पास्ट तो खैर ज्यादा पुराना नहीं है, बट हाँ मुझे याद आ गया
0: जी।
1: ये बात मेरे हिसाब से 9वीं क्लास की बात है और मैं पढ़ता था, तो पौधारोपण हमने किया था। प्रताप बंद पे मैं पौधा लगाने के लिए गया था अकेला। तो वहाँ पर जब हम पौधा लगाने के लिए गए तो बहुत डिस्टेंस पड़ता था उस टाइम, वो डेवलप भी नहीं हुआ था इतना अच्छा बाग। तो देन व्हाट वी डू कि जो आरओ के पानी की कैन आती है उस कैन को मैं अपनी साइकिल पर रख के आगे लेकर जाता था, वहाँ से पानी भरता था और पानी फिर उसमें पौधों में डालता था। आज अपने इंडिया में क्या हो रहा है, लाइक कोई भी व्यक्ति है वो पौधारोपण तो कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल जो काम है वो है उसके केयर करना, जो आज के टाइम में नहीं हो पाती। और एक पौधे की केयर करना एक बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? जिस प्रकार एक पिता अपने बेटे को संभालता है, इसी प्रकार एक पौधे को भी ऐसे ही संभाला जाता है। और आप अगर एक पौधे की बात करें तो मैं पता नहीं कितने पौधे आपको गिना दूं। मेरे इमोशनली मैं उनसे कनेक्टेड हूं, क्योंकि इमोशनली क्यों कनेक्टेड हूं, जो मेरे साथ घटना घटी COVID-19 में वो भी इमोशनल से कनेक्टेड थी
0: जी।
1: तो मैं हर पौधे के साथ में इमोशनली कनेक्टेड हूँ, और जब भी हम पौधारोपण करते हैं तो मंत्रोच्चारण के

0: में हम करते हैं तो हमारे इमोशन और संस्कृति तो तभी जुड़ जाती है।
1: जी जी जी बहुत जी। बढ़िया। तो युवराज, आप अब बड़ी संख्या में स्कूल और कोचिंग संस्थानों में जाकर भी बच्चों और युवाओं से अपने पर्यावरण की बात करते हैं। जब आप उन युवाओं से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा सवाल या क्या रिएक्शन होता है उन बच्चों का, वो क्या आपसे पूछते हैं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो डेफिनेटली वो सबसे पहले पूछते हैं, व्हाट्स योर एज भैया? और ये चीज मुझसे पूछते हैं, और मैं जब उनसे कहता हूँ आई एम 18 ईयर ओल्ड, दे गॉट शॉक। उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल दिया। तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि मैंने पौधारोपण कर दिया, ये मेरा कर्म है, ये मेरा सिविक सेंस है, मेरा अधिकार है, और ये करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। ये कोई अचीवमेंट मैं इसे नहीं कहूंगा, पौधारोपण करना कोई अचीवमेंट नहीं होता। पौधारोपण तो अधिकार है, आपको करना ही चाहिए।
1: जरूरतमंदों की सहायता और वृद्धजनों के साथ भी काम कर रहे हैं। पर्यावरण और समाज सेवा, इन दोनों को आप एक दूसरे से कैसे जोड़कर देखते हैं? इनमें कोई कनेक्टिविटी आपको फील होती है?
0: देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और समाज सेवा, कतई भिन्न नहीं है, ये एक ही चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: समाज सेवा क्या होती है? समाज में की गई सेवा समाज सेवा, और पर्यावरण, पर्यावरण उसी का एक पार्ट है। समाज किस चीज से बनता है? समाज लोगों से बनता है। लोगों के लिए क्या आवश्यकता है? लोगों के लिए आवश्यकता है एक शुद्ध पर्यावरण हो, और लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, मतलब समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो पौधारोपण करें। इसलिए ये कतई भी भिन्न नहीं है, ये दोनों जो है एक ही है। समाज पौधारोपण करे इसलिए वो कनेक्टेड है।
1: जी जी बहुत बढ़िया। तो युवराज, आप स्वच्छता अभियानों से भी जुड़े हैं, आप वो भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तब हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो जो हम पौधे लगा रहे हैं वो सुचारू रूप से अपना काम कर पाएंगे। तो युवराज, आपके नाम कई सम्मान है। 2023 में आपको पर्यावरण के क्षेत्र में कम उम्र में प्रभाव के लिए सम्मान मिला, और 2025 में यंगेस्ट चेंज मेकर एम्बेसडर अवार्ड भी मिला। इतने बड़े सम्मान मिलने के बाद आपके अंदर जिम्मेदारी बढ़ी या दबाव क्या फील हुआ? मतलब ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, अब अवार्ड मिल गया, एक टैग लग गया मेरे ऊपर?
0: नहीं जी, कतई नहीं। आपको कोई भी अवार्ड आपको एक टैग नहीं दे सकता, ये आपको एक अप्रिसिएशन दे सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है, आपको कह सकता है कि आपको ग्रेटिट्यूड दे सकता है। अपने इंडिया में सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो वो ये है कि ग्रेटिट्यूड नहीं है। इफ यू आर डूइंग समथिंग, कि मान के चलिए आप जूस पी रहे हैं और उस जूस को आपने नीचे फेंक दिया, ठीक है, आई मीन टू से कि उस ग्लास को आपने फेंक दिया, दूसरा व्यक्ति आता है और वो उसको कचरे में डाल देता है, तो आपको उससे थैंक यू बोलने के बजाय आप उससे कहोगे नहीं इसको मत करिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको वहां पे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, उससे कहना चाहिए थैंक यू सो मच, ये मेरी गलती थी कि मैंने ये नहीं किया। दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर छोटा सा भी काम करता है, यू हैव टू अप्रिसिएट, आप ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। तो आप जैसे ही उसको प्रभावित करते हैं शब्दों से, तो शब्द ही वो अप्रिसिएशन कहलाते हैं। और रही बात सम्मान की, सम्मान कोई भी हो, सम्मान आपको एक जिम्मेदारी दे सकता है। जिम्मेदारी इन द सेंस कि आपके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ऑलरेडी एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पौधारोपण तो करना ही करना है, लेकिन आपको एक अप्रिसिएशन, आपको अप्रिशिएट करके उस काम की ओर बढ़ाता है
1: जी,
0: तो ये सम्मान का।
1: तो आपका मानना ये है कि अवार्ड से आपके ऊपर दबाव नहीं बढ़ा, आपको एक अप्रिसिएशन लगा और आपको फिर उससे प्रेरणा मिली कि मैं आगे भी इस क्षेत्र में काम करता रहूं।
0: बिल्कुल ऐसा।
1: तो युवराज, हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ऐसा कोई आपका कोई फेवरेट गाना हो या कोई ऐसा गाना जिसे अक्सर आप गुनगुनाते हो, तो आज हमारे युवा श्रोताओं को भी वो गाना सुनवा दें।
0: जी ऋचा जी, एक्चुअली क्या है कि चाहे वो जेंजी हो चाहे कोई भी हो, सभी सॉन्ग और मूवी देखना पसंद करते हैं। बाकी मेरे जीवन में मैंने बहुत कम मूवी देखी है, और शायद हो सकता है एक दो देखी हूँ, और गाने भी बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक गाना फेवरेट है, उस गाने का नाम है किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार।
1: चलिए ठीक है, तो युवा श्रोताओं आपको सुनवाते हैं युवराज का ये फेवरेट सॉन्ग।

0: तो युवराज, आपसे बात हम फिर कंटिन्यू करते हैं। आज आपको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, लेकिन आपकी शुरुआत अलवर से हुई। तो आपके लिए अलवर और यहाँ के युवाओं की इस यात्रा में कोई खास भूमिका रही है?
1: देखिए, अगर अलवर के युवाओं की मैं बात कहूँ तो बेहद रूप से, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ उस जगह तो लोगों का सपोर्ट करना जायज़ है और उनको करना भी चाहिए और उन्होंने किया भी। लेकिन इसी प्रश्न की जब आपने शुरुआत करी तो सबसे पहले तो मैं अपने माता और पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक पढ़ने वाला व्यक्ति पहली बात तो कमाता नहीं है, और इन द 8th और 9th और 10th क्लास तो मे बी नॉट, और इन इंडिया तो बिल्कुल नहीं। तो उस पैसे को कहीं ना कहीं पौधारोपण में मेरे पिताजी ने जिस प्रकार दिया और
0: जी
1: बेफिक्र होकर दिया, तो मैं उनका बारंबार धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं कि आप ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। आई ऑलवेज थैंक यू टू दैम। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं का मेरे ऊपर बहुत सहयोग रहा, सपोर्ट किया उन लोगों ने और आज भी करते आ रहे हैं।
0: जी तभी तो एक टीम बनती है
1: बिल्कुल
0: जब हमें सपोर्ट मिलता है, और फिर लोकल लोगों से जब हमें सपोर्ट मिलता है तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन भी
1: जी,
0: मिलता है।
1: ये अभी शुरुआत है एक्चुअली।

0: बैंगलोर का एक एक युवा जो है इस पर्यावरण से कनेक्ट हो, ये उम्मीद है।
1: जी बिल्कुल, जो आपको उम्मीद है ये जरूर साकार होगी। तो युवराज, जैसा कि आपने अभी बताया, आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं और सामाजिक काम भी, इतने सारे कामों के बीच आप अपने लिए समय निकालना कितना मुश्किल लगता है, और आप पढ़ाई और सामाजिक कार्य के बीच बैलेंस कैसे बना पाते हैं?
0: जी, बहुत अच्छा सवाल है। और रही बात मैनेजमेंट की, इन इंडिया सबसे मेन चीज है मैनेजमेंट।
1: जी
0: नॉट ओनली इन इंडिया, आप मतलब कोई भी व्यक्ति हो, हर प्रकार के व्यक्ति, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मैनेजमेंट। आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? अब रही बात मैनेजमेंट की, अब ऐसा तो है नहीं हम हर दिन पौधा रोपण करेंगे। वी आर स्टूडेंट, तो हमने एक टाइम टेबल डिसाइड किया कि हम संडे को या फिर होलीडे वाले दिन हम प्लांटेशन करेंगे। अभी तक 15 स्टेट में टीम है और 5 और कंट्रीज में भी हमारी टीम है। सो हम क्या करते हैं, हमने एक शेड्यूल तय किया हुआ है, वो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल देखते हैं और उस हिसाब से वो काम करते हैं।
1: जी
0: और रही बात आपकी पढ़ाई की और इन सब चीज़ों की, सारी चीज़ों मैनेजमेंट का खेल होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, कितने टाइम आपको ये करना है, कितने टाइम आपको ये करना है,
1: बिल्कुल।
0: ये सारी चीज़ें हैं।
1: तो अगर जब हम मैनेज करके चलते तो किसी चीज का प्रेशर फील
0: नो
1: नहीं होता,
0: बिल्कुल
1: ये नहीं लगता कि हाँ अरे मुझे पढ़ाई भी करनी है
0: हाँ
1: या फिर अरे
0: एग्जैक्टली
1: मुझे पौधा रोपण करना।
0: हाँ
1: तो युवराज, अंत में मैं आपसे एक ऐसी बात जानना चाहूंगी जो शायद हमारे हर युवा श्रोता के लिए महत्वपूर्ण हो। अगर कोई युवा कहता है कि मैं भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ना बहुत पैसे हैं, ना कोई बड़ी टीम, और ना ही बहुत ज्यादा समय, तो आप उससे क्या कहेंगे?
0: जी, आपने कहा अगर कोई व्यक्ति कहता है कि समाज सेवा उसको करनी है, उसके पास पैसा नहीं है और ये सारी चीज़ें करनी है। देखिए भाई, मेरे पास भी कुछ नहीं था और स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। और रही बात प्लांटेशन करने की या फिर कोई भी आप चीज़ें करते हैं, वो आप एज अ वॉलेंटियर के रूप में कर सकते हैं। तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, तमाम चीज़ें काम कर रही हैं, उनमें आप जुड़ के भी कर सकते हैं।
1: जी
0: आप मान के चलिए, आप वृद्धाश्रम में ही अगर जाते हैं तो वो आप पैसे के भूखे नहीं हैं, वो किस चीज़ के भूखे हैं, आप वहाँ जाएं, आप सेवा करें। अब सेवा
1: बिल्कुल
0: आपकी पैसे उसे नहीं होती, आप जाइए ना, पैर दाबिए ना उनके,
1: बिल्कुल
0: आप जाइए, आप कहीं भी, आप अनाथ आश्रम में जाइए ना, आप कैसे बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें चल रही हैं, वहाँ जाइए आप। और चीज़ें पैसों से ही नहीं होती हैं, व्यवहार से होती हैं, भाव से होती हैं, इस भाव के अनुसार आप काम कर सकते हैं। और जितने भी मेरे युवा श्रोता इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, आज से हम कुछ टाइम पहले की अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जब रिटायर होता था उसके बाद वो समाज सेवा में आता था, लेकिन आज का युवा धीरे धीरे समाज सेवा के प्रति बढ़ रहा है। और इस चीज़ को देखकर मुझे लगता है कि रियली इंडिया इज गोइंग अप, और बड़ा अच्छा लगता है। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसी चीज़ों में जुड़ेंगे और समाज सेवा के प्रति आपका भाव अलंकृत होगा।
1: जी युवराज, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और शायद यही आपकी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा एक मैसेज भी है कि बदलाव हमेशा किसी बड़े मंच से शुरू नहीं होता, कभी कभी उसकी शुरुआत एक छोटे से पौधे से भी हो सकती है। तो युवराज, आपने हमारे साथ अपना समय साझा किया, अपनी यात्रा के कई पहलुओं के बारे में बताया, और उम्मीद है कि आपकी बातें हमारे युवा श्रोताओं तक जरूर पहुंचेंगी। आपको अपने आने वाले प्रयासों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, आप भी याद रखिए, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, अब उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी, और मैं बारंबार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा आकाशवाणी अलवर का।
1: तो दोस्तों, ये थी हमारे युवराज प्रधान जी के साथ बातचीत। आशा है कि उनका मैसेज आप तक जरूर पहुंचा होगा, और आप भी प्लांटेशन सोशल वर्क से जुड़ेंगे, आप भी समाज के लिए कुछ करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी दोस्त ऋचा मीना को इजाजत। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना,

0: पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: अभी आप युवाणी का अधिकतम सुन रहे थे। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सदस्य का चैनल है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: سر فیروزی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है. श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें. प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की.
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं. भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है. आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है.
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया. इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया. इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई. भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया. उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है. उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया. कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है.
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है. आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली.
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे. पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है. उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है. इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है. ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है. इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है. कोलंबो में

0: श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष रहे वैकल्प प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले किए जाएंगे। 7:00 किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा ग्राम भारती, जिसके अंतर्गत आज चर्चा का विषय रहेगा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाएं और कृषि उद्यमिता से महिला सशक्तिकरण। एक भेंटवार्ता श्री गफूर खान सहायक कृषि अधिकारी उद्यान विभाग अलवर से होगी। विषय रहेगा कृषि में उद्यमिता विकास एवं रोजगार की संभावनाएं। इसके अलावा एक जानकारी कार्यक्रम में दी जाएगी लखपति दीदी योजना। साथ ही कार्यक्रम में होंगे मौसम और बाजार भाव की जानकारी।

शाम 7:30 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। 8:15 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आज माता दीन और उनके साथियों के गाए लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे समाचार अंग्रेजी में दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। 9:15 से आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। रात 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे और आज की हमारी ये सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर।

हमारी कल की सभा में सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे। 6:05 पर भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा वंदन वार। 6:35 पर रामचरितमानस गान सुनवाया जाएगा। 6:45 पर संगीत सरिता। 7 बजे कार्यक्रम होगा नमस्कार अलवर। 7:30 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:15 पर सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम होगा।

सुबह 8:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 9:10 से आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। शाम 5 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, और 5:30 बजे युवा श्रोता सुन सकते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, फिल्म का नाम था आराधना। और आइए सुनवाते हैं आपको कभी कभी फिल्म से ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार हैं शाहिर लुधियानवी, संगीत है खय्याम का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म कभी कभी का ये गीत अभी आपने सुना। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ें, फिल्म का नाम अभिमान।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादाजी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भारत में विश्वास जताया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रमुख कंपनियों के सीईओ से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को जन सहभागिता के साथ काम करने के निर्देश। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हुआ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर कल शिवालयों में भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। पवित्र सरोवरों से कांवड़ लाने का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखे।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: गौरतलब है कि 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। बीती 18 जुलाई को देश की एक निजी कंपनी ने भी पहला विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत की अंतरिक्ष शक्ति को और ऊंचाइयां प्रदान की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। वहीं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाकर जन सहभागिता के साथ काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जयपुर में समीक्षा बैठक की। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में 12 वफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार और पर्व आ रहे हैं। ऐसे में आमजन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए जिससे छोटी बड़ी जानकारी समय पर मिल सके और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत सहित उच्चाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

0: कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान और जापान के बीच रत्न आभूषण सहित अन्य उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष सुविधाएं विकसित कर जापानी कंपनियों को अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज जयपुर में जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ उद्योग और निवेश को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और जापान के बीच वर्षों पुराना नाता है। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन मिलकर तकनीक और निवेश के साथ रत्न आभूषण व्यापार को और आगे लेकर जाए। इससे व्यापार बढ़ने के साथ ही रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान की 180 कंपनियां राजस्थान में काम कर रही है। बैठक में जापान के कोफू सिटी मेयर युइची हिगुची ने राजस्थान सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और यहां उपलब्ध निवेश अवसरों की सराहना की। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। श्री मेघवाल ने कहा कि बीमा और मुआवजे से जुड़ी योजनाओं को एकीकृत करने और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए अधिक समन्वित ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि 1857 के विद्रोह से जुड़े वाल्मीकि समुदाय के नायक गंगू बाबा की प्रेरणा को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक विकसित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी है। भाजपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। 309 स्थानीय निकायों में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। प्रत्याशी 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में महज 3 दिन का समय शेष रहते प्रमुख पार्टियों का टिकट लेने के लिए प्रत्याशी जोर शोर से दमखम दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता है, वहीं बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम वोटर हैं। कल श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। इस मौके पर प्रदेश भर में शिवालयों और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उल्लास देखा जा रहा है। तड़के से ही शुरू होने वाला बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे कल अपने पूरे परवान पर रहेंगे। पवित्र सरोवरों से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्राएं भी जोर शोर के साथ चल रही है। झुंझुनू जिले के लोहारगल स्थित प्राचीन कुंड से जल शेखावटी क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज के मंदिरों तक पहुंचाने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं। जयपुर के गलता सरोवर, बीकानेर के श्रीकोलायत और पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम के जल को भगवान को अर्पित करने को लेकर लोगों में उत्साह बनाया हुआ है। नागौर में आज निकाली गई कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शक्कर तालाब से शुरू हुई यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आमजन ने सरोवर का पूजन कर जल संरक्षण की शपथ ली।
1: सरोवर पूजा के बाद सुबह शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु कांवड़ लेकर शामिल हुए। यात्रा विजय वल्लभ चौक, दिल्ली गेट, ए रोड और गंध चौक होते हुए शिवबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और शहरवासियों ने पुष्प और शक्कर कांवड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान जीवंत झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया। मंदिर पहुंचने पर संत महात्माओं के प्रवचन, भस्म आरती और धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज मेवाड़ के एकलिंगजी महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इससे पहले उदयपुर दौरे में राज्यपाल ने मताधा स्थित मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित

0: कर पैनोरमा का अवलोकन किया। राज्यपाल ने बप्पा रावल को भारतीय इतिहास का महान योद्धा बताते हुए सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में आज बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने पौधों की आरती उतारी और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र में हाल ही में जन्मी बेटियों की माताओं ने कन्याओं के नाम पौधे भी लगाए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली में शिक्षा विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से ब्लू प्लेनेट प्रश्नोत्तरी और कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले भर के विद्यार्थियों ने पर्यावरण, पृथ्वी और जल संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी भावनाओं को कला के जरिए व्यक्त किया। विजेताओं को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापत्तनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भारत में विश्वास जताया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रमुख कंपनियों के CEO से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जनसहभागिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हुआ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर कल शिवालयों में भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। पवित्र सरोवरों से कांवड़ लाने का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले की चिट्ठी की शुरुआत नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही प्रतापगढ़ जिले के नगर परिषद और सभी नगर पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ श्रेणी के लाइसेंसधारी शस्त्रधारियों से हथियार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित हथियार निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव का काम पूरा होने के बाद हथियार वापस किए जाएंगे। चुनाव को लेकर जिले के नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। 19 अगस्त से 22 सितंबर की मध्य रात्रि तक लागू निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति हथियार लेकर चलने और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। बिना पूर्व अनुमति के सभा, धरना, रैली, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार में पोस्टर, बैनर, झंडे, होर्डिंग, लाउडस्पीकर और वाहनों के उपयोग के लिए भी निर्धारित अनुमति जरूरी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और डीजे पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग देने की अपील की है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर शुभम चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी दलों से नियमों का पालन करने और चुनावी गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमतियां लेने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय समारोह

हो गरिमा और उल्लास के साथ आयोजित हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब समाज के हर व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और आगे बढ़ने के अवसर मिले। समारोह में परेड, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण भी हुआ। इसी कड़ी में राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक शाम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को मतदाता जागरूकता, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। स्वीप एम्बेसडरों ने छात्राओं को जागरूक किया। पिछले दिनों हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अभियान के तहत नगर परिषद परिसर में जिला स्तरीय तिरंगा प्रदर्शनी लगाई गई। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां तिरंगे के इतिहास, स्वरूप और राष्ट्रीय महत्व की जानकारी दी गई। अधिकारियों और आमजन ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। धमोतर पंचायत समिति में तिरंगा मेले के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए, जिससे देशभक्ति के साथ ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और आत्मनिर्भरता का संदेश भी सामने आया। प्रतापगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक जिला एक उत्पाद थेवा विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। युवाओं को ODOP, MSME, एक्सपोर्ट पॉलिसी तथा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के विद्यालयों और नर्सिंग महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक और मानसिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। विद्यालयों में शिकायत पेटी लगाने की पहल भी की जा रही है। सावन के महीने में जिले भर में जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और सोमवार के दिन शिवालयों में जलाभिषेक और सहस्त्र घट के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। श्रावण के पहले सोमवार को प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने भगवान शिव का अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: पहले आज री खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप्स भारत माए विश्वास जतायो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे प्रमुख कंपनियां रा सीईओ सू चर्चा करी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका प्रदेश माए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेट समीक्षा बैठक ली। अहलकारा ने जन सहभागिता रे साथे काम करने रा हुकुम दिया। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दला माए उम्मीदवारा ने लेर मंथन तेज व्यो। और श्रावण महीना रा अंतिम सोमवार माथे काले शिवालया माए भोलेनाथ रा अभिषेक ने लेर श्रद्धालुआ माए उछास। पवित्र सरोवर सू कावड़ लाने रो सिलसिलो जारी है। समाचार रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो है कि अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप सरकार माए आपरो विश्वास जतायो है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रे मौके माथे प्रधानमंत्री अंतरिक्ष खेतर रे स्टार्टअप रे मुख्य कार्यकारी अहलकारा रे साथे चर्चा करी। प्रधानमंत्री रोजाना जतन करे और अंतरिक्ष खेतर रा एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने री अरज करता हुआ कयो कि एड़ो अनुकूल माहौल बनायो जानो चाहिए जिनसू दुनिया भर रा लोग अंतरिक्ष खेतर माए आपरो करियर तलाशने खातिर भारत ने पसंदीदा गंतव्य रूप में देखे।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी।

0: जी जुड़ जाओ, मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: ध्यानयोग है कि 2023 माह आज ही रे दिन भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 रे चंद्रमा रे दक्षिणी ध्रुव माथे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग री याद माह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनायो जावे है। आ उपलब्धि हासिल करने वालों भारत दुनिया रो पहलो देश हो। बीती 18 जुलाई ने देश री एक निजी कंपनी भी पहलो विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर री अंतरिक्ष शक्ति ने और ऊंचाइया माथे पहुंचायो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह देशवासियों ने शुभकामनाएं दी। श्री राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट माए कहो कि अंतरिक्ष अन्वेषण माए भारत री उल्लेखनीय उपलब्धियां देश री वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार री भावना ने आगे बढ़ाने रे पक्के संकल्प रो प्रमाण है। प्रधानमंत्री आपरे संदेश माए कहो कि नूवी वैश्विक व्यवस्था माए भारत लगातार आपरे अंतरिक्ष क्षेत्र रो विस्तार कर रियो है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो कि चंद्रयान 3 री ऐतिहासिक उपलब्धि रे साथ ही भारत अंतरिक्ष रा क्षेत्र माए अग्रणीय देशा माए भेड़ो वैग्यो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका अहलकारा ने प्रभावी कार्य योजना बनार जन सहभागिता रे साथे काम करने रो कहो है। मुख्यमंत्री प्रदेश माए कानून सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेर जयपुर माए समीक्षा बैठक करी। श्री शर्मा कहो कि आवण वाला दिना माए बारा वफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जड़ा मोटा त्योहार और पर्व आ रिया है। एड़ा माए आम जन रे साथे आपसी समझ पक्की करी जावे जिनसू छोटी बड़ी जानकारी बकत माथे मिल सके और जरूरी कार्रवाई पक्की करी जा सके। बैठक माए पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत समेत उच्चाधिकारी मौजूद रिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि राज्य सरकार राजस्थान और जापान रे बीच रत्न आभूषण समेत दूजा उद्योगों रे विकास खातिर रोड मैप बनार काम कर रही है। वणा कहो कि खास सुविधावां विकसित कर जापानी कंपनियां ने अनुकूल माहौल मुहैया करवायो जा रियो है। आज जयपुर माए जापान रे प्रतिनिधिमंडल साथे उद्योग और निवेश ने लेर आयोजित बैठक माए मुख्यमंत्री कहो कि राजस्थान और जापान बीचे बरसों पुराणो नातो है। श्री शर्मा कहो कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन मिल तकनीक और निवेश रे साथे रत्न आभूषण व्यापार ने और आगे लेर जावेला। इनसू व्यापार बधने रे साथे ही रोजगार रा भी बत्ती उबत्ती मौका बनेला। मुख्यमंत्री बतायो कि जापान री 180 कंपनियां राजस्थान माए काम कर रही है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि सफाई रे काम माए मानवीय श्रम ने कम करने और मशीना रे बत्ती इस्तेमाल री जरूरत है। आज नवी दिल्ली माए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रे थापना दिवस जलसा माए वणा कहो कि सफाई कर्मियां रे खातिर सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमो जरूरी है। श्री मेघवाल कहो कि बीमा और मुआवजे सू जुड़ी योजनावां ने एकीकृत करने और सफाई कर्मचारियों रे कल्याण खातिर समन्वित ढांचो तैयार करने री जरूरत है। बना घोषणा करी कि 1857 रे विद्रोह सू जुड़िया वाल्मीकि समुदाय रा नायक गंगू बाबारी प्रेरणा ने जन जन ताई पहुंचाने रे लखस सू एक राष्ट्रीय स्मारक विकसित करयो जावेला। ए खबर आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सू सुन रिया हो। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़न लगी है। भाजपा और कांग्रेस समेत प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार ने लेर मंथन तेज कर दियो है। 309 स्थानीय निकायां माए दो चरणा माए वोट डालिया जावेला। पहले चरण रो मतदान 9 सितंबर ने हुवेला, वठी ने 11 सितंबर ने दूजे चरण री वोटिंग वेला। प्रत्याशी 27 अगस्त सू 31 अगस्त ताई नामांकन पानो दाखिल कर सकेला। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने माए महज 3 दिन रो बखत बाकी रहो है। प्रमुख पार्टियां रा टिकट लेने खातिर प्रत्याशी जोर शोर सू दमखम दिखा रिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि आ चुनाव माए 1,44,00,000 सू बत्ती वोटर आपरे मताधिकार रो प्रयोग कर सकेला। जयपुर नगर निगम माए सबसू 32 मतदाता है, बठीने बूंदी रे इंद्रगढ़ माए सबसू कम वोटर है। काले श्रावण मास रो अंतिम सोमवार है। इन मौके माथे प्रदेश भर माए शिवालय और मंदिरा माए भगवान भोलेनाथ रे अभिषेक ने लेर श्रद्धालुआ माए खासो उचास देखो जा रियो है। तड़के सू ही बम बम भोले और हर हर महादेव रा जयकारा काले आपरे पूरे परवान माथे रेवेला। पवित्र सरोवरां सू पानी लार भगवान शिव ने चढ़ायो जावण खातिर कावड़ यात्रा मां भी जोर शोर रे साथे चाल रही है। झुंझुनू जिला रा लोहारगढ़ स्थापित प्राचीन

0: सू पानी सेखा वाटी खेतर रह साथे साथे दूर दराज सू मिंदिरा ताई पहुंचावन खातिर कावड़िया पूग्य रह। जयपुर रा गलता सरोवर बीकानेर रे श्री कोलायत और पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम रे जलसू भगवान शिव रे अभिषेक करण ने लेर लोगा माए उछास बनेड़ो है। नागौर माए आज निकाली जी कावड़ यात्रा माए हजारा री तादाद माए श्रद्धालु भेड़ाव्या। तालाब सू शुरू हुई यात्रा रो जगह जगह स्वागत करो गयो। आम जन सरोवर रो पूजन कर जल संरक्षण री शपथ भी ली।
1: सरोवर पूजा के बाद सुबह शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु कावड़ लेकर शामिल हुए। यात्रा विजय वल्लभ चौक दिल्ली गेट ए रोड और गंध चौक होते हुए शिवबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और शहरवासियों ने पुष्प और शक्कर कावड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान जीवंत झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया। मंदिर पहुंचने पर संत महात्माओं के प्रवचन, भस्म आरती और धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज मेवाड़ रा एक लिंगजी महादेव मिंदर माए दर्शन कर पूजा अर्चना करी। इनसू पहले उदयपुर दौरे माए राज्यपाल मथाता थापित मेवाड़ रा संस्थापक बप्पा रावल री प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित कर पैनोरमा रो अवलोकन करो। राज्यपाल बप्पा रावल ने भारतीय इतिहास रो महान योद्धा बताता थका सगड़ा ने वाणे जीवन सू प्रेरणा लेवन रो हेलो करो। राजसमंद जिले रा पीपलात्री गांव माए आज बेटियां पेड़ा ने राखी बांधर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो। इन रचालता लोगा पौधारी आरती भी उतारी और वाणी सुरक्षा रो संकल्प भी लियो। कार्यक्रम माए क्षेत्र माए हाल ही माए जन्मी बेटियां री मातावां ने कन्यावारा नाम भी पौधा लगाया और कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियां समेत बड़ी तादाद माए ग्रामीण मौजूद रहा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत रे लक्ष्य ने हासिल करने और भारत ने 45 अरब डॉलर री अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनावण में महत्ती भूमिका निभावेला। आज अहमदाबाद में तीजे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जलसा में बणा कहो कि अंतरिक्ष क्षेत्र रा सुधारा सू स्टार्टअप और उद्योग जगत खातिर मौका बध्या है। कार्यक्रम में इसरो अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रा निदेशक वी एन राव भी मौजूद था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया स्वस्थ जीवन शैली साइकिल चलाने रहे आपरी दिनचर्या माए भिड़ो करने री अरज करी है। डॉक्टर मांडविया आज विशाखापत्तनम माए ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम रे पाछे मीडिया सु कहो कि साइकिल चलानो फिट इंडिया आंदोलन रो खास हिस्सो है। और अब अंत में खास समाचार एक फिर सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप्स भारत माए विश्वास जतायो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे प्रमुख कंपनियां रा सीईओ सू चर्चा करी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका प्रदेश माए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेट समीक्षा बैठक ली। अहलकारा ने जन सहभागिता रे साथे काम करने रा हुकुम दिया। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दला माए उम्मीदवारा ने लेर मंथन तेज हुयो। और श्रावण महीना रा अंतिम सोमवार माथे काले शिवालया माए भोलेनाथ रा अभिषेक ने लेर श्रद्धालुआ माए उछास। पवित्र सरोवर सू कावड़ लाने रो सिलसिलो जारी है। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो। माणो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करो जावेला। नमस्कार।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं। हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ग्राम भारती।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को खूबी बहन की घनी घनी राम राम साहब। आज हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के बारे में। आज का हमारी जो चर्चा का विषय है वो भी हमारे किसान भाइयों यही है कि ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकारी योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। अब शहरों में तो यूं तो महिलाएं सशक्त हो ही रही हैं, इसलिए सरकार का ध्यान है कि हमारी जो ग्रामीण महिला बहनें हैं वो भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सारी सरकारी योजनाएँ चल रही हैं, लेकिन परेशानी सिर्फ यह हो जाती है कि हमें उस चीज़ों की जानकारी नहीं होती या जागरूकता की कमी के कारण हम उन सुविधाओं का या उन योजनाओं का लाभ उठा नहीं पाते हैं। इनमें से एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब जो युवाओं को कौशल प्रदान करना है जो गरीब या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और उन्हें कौशल प्रदान करके इस तरह से तैयार करना है कि वो गरीबी को ख़त्म कर सकें और उन्हें एक नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी जो है वो मिल सके। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं के समूह में से एक योजना है, और इस योजना से में जो जिस तरह का काम दिया जाएगा युवाओं को उसमें होगा ग्रामीण जो युवा हैं उनकी पहचान करना, उनकी रुचि के अनुसार ग्रामीण युवाओं को जुटाना, युवाओं और अभिभावकों की काउंसलिंग करना और उनकी योग्यताओं के आधार पर उनका चयन करना। इसी तरह से किसान भाइयों एक योजना और है जिसका नाम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। राष्ट्रीय किसान नीति के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला किसानों के लिए विशेष रूप से महिला किसान सशक्तिकरण योजना लागू की है जो कि एक दीनदयाल अंत्योदय योजना का ही एक उपघटक योजना है। इसके लिए 60% तक की जो सहायता राशि है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी, और इसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों को बढ़ावा देना है। यह योजना किसानों के रूप में महिलाओं की पहचान करके कृषि पारिस्थितिकी रूप से स्थायी तरीकों के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता का निर्माण करने का प्रयास करेगी और महिलाओं को उनके सामुदायिक प्रबंधन, टिकाऊ खेती, गैर कीटनाशक प्रबंधन, जीरो बजट, प्राकृतिक खेती, पशु सखी, मॉडल फॉर डोर स्टेप, एनिमल केयर सर्विसेज, सस्टेनेबल रिजर्वेशन और गैर इमारती लकड़ी के उत्पादों की कटाई जैसे स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर को मजबूत करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसी तरह से एक योजना और है किसान भाइयों जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना जो है वो जो गरीब महिलाएं हैं और जो गर्भवती भी हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं को 5,000 रुपये की मदद प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि गर्भावस्था और बच्चे के पैदा होने के बाद महिला काम ना करके आराम करे, इसके लिए आर्थिक मदद दी जाती है। तो यह तो हमने चर्चा करी हमारी योजनाओं के बारे में। अब पहले किसान भाइयों सुन लेते हैं कुछ संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर

0: बनाई, जल हौज, पाइपलाइन, फव्वारा और ड्रिप अपनाएं और अनुदान का लाभ भी उठाएं।
1: बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लघु और सीमांत किसानों के लिए 75% और सामान्य किसानों के लिए 70% तक अनुदान दी है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम किसान सेवा केंद्र से संपर्क करें। आत्मा योजना अलवर द्वारा किसान हित में जारी।
2: तो संदेशों के बाद हमारे किसान भाइयों, आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब सुनते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी वाली भेंटवार्ता, कृषि में उद्यमिता विकास एवं रोजगार की संभावनाएं। जानकारी दे रहे हैं श्री गफूर खान, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान विकास अलवर। इनसे सुनते हैं भेंटवार्ता और लेते हैं जानकारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सभी भाई और बहनों को हमारे राम राम। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि में उद्यमिता विकास एवं रोजगार की संभावनाएं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री गफूर खान, जो कि सहायक कृषि अधिकारी हैं और उद्यान विभाग अलवर में कार्यरत हैं। तो गफूर खान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
3: तो गफूर खान जी, आज हमने जो बातचीत का विषय रखा है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो खेतीबाड़ी तो करते ही हैं, और खेतीबाड़ी के साथ साथ हम आपसे किसान भाइयों को जानकारी दिलवाना चाहें कि ऐसे खेती के साथ साथ कौन से रोजगार के अवसर हैं जिनको हमारे किसान भाई अपनाएं और अपना रोजगार बढ़ाएं।
4: जी, बहुत अच्छी बात है। और जो आपका आपने विषय लिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश की बात करें, आज की परिस्थितियों की बात करें, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है
3: जी।
4: क्योंकि किसान भाई युगों से खेती करता है, और आज जो थोड़ा परिस्थितियां यूं बदली है कि अब जमीन का जो रकबा है वो घटता जा रहा है
3: जी।
4: किसान अब तक जो खेती को सिर्फ एक जीवन व्यापन का एक तरीका समझते थे कि एक जिंदगी पार हो जाएगी या बच्चों की जिंदगी पार हो जाएगी, खाने को अनाज पैदा हो जाएगा या उसकी थोड़ी बहुत जो मिनिमम जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, इससे आगे कभी किसान ने सोचा ही नहीं। और उसकी परिस्थितियां थी, क्योंकि उस वक्त किसान इतना पढ़ा लिखा समझदार नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में किसानों के जो बच्चे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, आज उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि चाहे किसान के पास 5 बीघा ज़मीन हो, वो भी अपने परिवार के बारे में सोचता है कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा और उसकी ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी इस खेती से। अगर किसी के पास 50 बीघा है तो हालात तो उसके भी ऐसे ही हैं, सिर्फ वो ये सोचता है कि भाई मेरे परिवार की या मेरी जो जरूरतें हैं वो पूर्ति हो जाएगी। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस खेती से, इसको उद्यम के रूप में सोचा ही नहीं कि इससे बहुत बड़ा एक उद्यम जो पैदा किया जा सकता है। जबकि इसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, जो कृषि आधारित उद्यम है वो बहुत फलीभूत हो रहे हैं। अब हमारे जो लोग हैं 65-70% आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है।
3: बिल्कुल।
4: और जब खेती पर निर्भर है तो निश्चित रूप से उसको रोजगार भी खेती से चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: क्योंकि इतना रोजगार सरकार दे नहीं पाती है। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, अगर वो अपनी खेती को एक उद्यम के रूप में विकसित करे तो वो बहुत से लोगों को रोजगार भी दे सकता है। अब उदाहरण के रूप में मैं समझाऊं कि एक व्यक्ति 500 वर्ग मीटर है, मतलब वो उसके बीघे का 20वां हिस्सा में कोई एक प्लॉट लेता है और उसमें कृषि आधारित कोई भी प्लांट लगाता है
3: जी।
4: चाहे वो ये मान लीजिए कि अचार का ही प्लांट लगाता है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से। अगर कोई किसान अचार की प्रोसेसिंग करता है, अचार बनाता है, तो उसका सारा रॉ मटेरियल वही है जो किसान पैदा कर रहा है
3: जी। बिल्कुल
4: ना?
3: और वो सारा किसान के पास उपलब्ध है, और
4: वो सब किसान के पास उपलब्ध है। लेकिन वो अपनी 10 या 20-15 रुपए किलो चीज को बेच के वही 200 रुपए किलो खरीदता है उससे।
3: बिल्कुल।
4: तो किसान को भी उसी तरीके से सोचना पड़ेगा
3: जी।
4: अगर किसान उस तरीके से नहीं सोचेगा तो हालात उसकी सुधरने वाली नहीं है। अच्छा, आप देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि किसान बाजरा पैदा करता है।
3: बिल्कुल।
4: किसान जौ पैदा करता है। अब किसान से किसी से भी पूछा जाए तो वो क्या करता है कि बाजरे का, अगर उससे पूछा जाए बाजरे का क्या किया जा सकता है, तो बाजरे के बारे में उससे सोचेगा कि बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है, या अब सरकार ने कुछ इनोवेशन किए हैं कि वो बता देगा कि भाई बिस्कुट्स बनते हैं।

0: या सर्दियों में उसका खिचड़ी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, वो बहुत मतलब किसान मोटा मोटा यही बताएगा क्योंकि उसकी सोच यहीं तक है जो है। तो जौ के बारे में भी कि रोटी बनाती हैं, इसकी रोटी बड़ी अच्छी होती है, और इसका गर्मियों में जो राबड़ी बनाते हैं वो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अभी हमारे अलवर की बात बता रहा हूँ, तो सोडावास में एक साबी नदी है
1: जी, बिल्कुल
0: साबी नदी के पास में दो प्लांट लगे हुए हैं, वाइन प्लांट। और वो वाइन प्लांट क्या है कि सिर्फ उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, जौ और बाजरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वहाँ पर वो एक लीटर के या जो भी होती है वो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये लीटर का वहाँ पर वो चीज़ें बनती है। तो ये चीज़ें इस तरह से, अभी मान लो जैसे अपन प्रोसेसिंग की बात करें
1: जी,
0: जैसे मान लो अब आप प्रोड्यूस कर रहे किसी का जैसे फलदार है
1: जी,
0: अब जैसे आंवला है
1: बिल्कुल, आप बगीचे
0: या सब्जी है
1: बिल्कुल,
0: या आंवला है जो भी है, फल है या सब्जी है
1: जी,
0: ये चीज़ें अभी तक किसान किस चीज़ से परिचित है कि भाई हम खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे डेयरी
1: जी,
0: एक डेयरी का भाई दुग्ध उत्पादन करता है किसान इसी परिस्थिति से, या मुर्गी पालन कर लिया है, या अब कुछ कुछ किसान ऐसा है जैसे मधुमक्खी पालन पर उनका ध्यान जाने लगा है, मधुमक्खी पालन पर
1: जी बिल्कुल।
0: अब तीसरी चीज क्या है कि कुछ कुछ किसानों ने कुछ कुछ प्लांट लगा रखे हैं कि भाई चलो ठीक है, कुछ वेस्ट रहता है अपना तो वर्मी कंपोस्ट की तरफ ध्यान चल गया
1: जी।
0: और उसके बाद अगली चीज़ें जैसे कुछ कुछ किसान हैं जो बहुत एडवांस किसान हो गए हैं तो मशरूम उत्पादन करने लगे हैं, और वो मशरूम उत्पादन से अच्छी इनकम भी कर रहे हैं
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन अभी तक ये जो किसान हैं इनसे बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हुए,
1: या जैसे इनसे परिचित लोग कम हैं और वो उसकी तरफ उनका लोगों का झुकाव कम है,
0: या जैसे बागवानी करने लगे हैं, जैसे जमीन कम है तो कुछ कुछ किसान लोग बागवानी करने लगे हैं
1: बिल्कुल।
0: तो वो क्या है कि अगर हम उसको बड़ा रूप करें तो एक बड़े उद्यम का रूप नहीं हो सकता
1: जी।
0: अगर एक प्रोसेसिंग की तरफ चले जहां वैल्यू एडिशन की बात करते हैं
1: जी,
0: तो हमें उस वैल्यू एडिशन पर जाना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
1: जी,
0: उनको डायरेक्ट ना करके उनकी प्रोसेसिंग करें। भाई जो किसान है, आप देखिए उद्यम का मतलब ये होता है कि चाहे एक या एक से अधिक लोग मिलकर कोई ऐसा एक यूनिट स्थापित करें जिससे उस रॉ मेटेरियल है जो किसान का
1: जी बिल्कुल,
0: वो उसकी प्रोसेसिंग करे, उसका वैल्यू एडिशन करे, उसको मार्केट में खुद उतारे,
1: तो वो बिल्कुल वो ज्यादा
0: प्रॉफिट उसको देगा। जैसे सिंपल सी मैं बताऊँ आपको, आप देखिए आंवला का एग्जांपल देता हूँ, आंवला 20 रुपए किलो बिकता है
1: जी बिल्कुल,
0: और चीनी 40 रुपए किलो, मतलब यही रेट है ना
1: जी बिल्कुल।
0: अब दोनों को 1 किलो आंवला और 1 किलो चीनी, 2 किलो 60 रुपए का हो गया
1: जी बिल्कुल।
0: अभी किसान को भी पता है, लेकिन अगर मार्केट में जाओगे तो इसका मुरब्बा लेके आओगे तो मेरे हिसाब से 125-150 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा
1: जी,
0: है क्या चीनी और आंवला
1: बिल्कुल।
0: अगर उसी आंवले की कैंडी की बात करें तो 250-300 रुपए किलो से कम नहीं मिलती
1: जी।
0: तो वो जो उद्यम है, मतलब हमारे हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर का
1: जी,
0: चाहे वो जो भी फसल हो, हम उसे डायरेक्ट बेचने की बजाय हम उसकी प्रोसेसिंग की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें सरकार चाहती है कि किसान, जैसे अब FPO कॉन्सेप्ट आया है
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: वो एक कंपनी की तरह सरकार चाहती है कि भाई किसान खुद एक इस तरह की यूनिट स्थापित करें जो अपने को भी और आसपास के लोगों को रोजगार दे, जिसमें 5 लाख से 25 लाख रुपए तक सरकार मदद करती है किसानों को इस तरह के रोजगार स्थापित करने के लिए। एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ किसान भाइयों को कि कुछ किसान, कुछ लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक कृषि पर्यटन
1: जी,
0: मतलब लोगों में आज ये है कि शुद्ध खाना, देसी खाना, जैविक खाना, उस तरह का एक रुझान ट्रेंड चला हुआ है। और आप अलवर के आसपास ही देखेंगे कि लोगों ने 10-10, 15-15 जो पैसे वाले हैं उन्होंने लेके वो कंप्लीट फार्मिंग वहाँ करते हैं
1: जी,
0: और बाहर से लोग आते हैं उनको देसी जो क्या है कि उत्सुकता होती है ना कि भाई ताजा हम खाएं
1: बिल्कुल,
0: तो वो लोग करते हैं और वहां से उनसे अच्छे चार्ज करते हैं
1: जी।
0: तो वो हमारे अगर किसान भाई जागरूक हैं, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हैं
1: जी बिल्कुल,
0: अगर वो जागरूक हैं तो वो आसपास कहीं हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम वहां से जनरेट कर सकते हैं। अब सिंपल सी देखिए मिक्स अचार, जैसे मिक्स अचार आता है, गाजर 10 रुपए किलो बिकती है, 15 रुपए किलो बिकती है किसान की गाजर 10-15 रुपए किलो बिकती है, कैरी 20-30 रुपए किलो बिकती है, और उसका मिक्स जब अचार आता है तो वो 150 रुपए किलो बिकता है। यानी आपने उसकी वैल्यू एडिशन की, आप प्रोसेसिंग में गए, आपने 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो की चीज आपने 150 रुपए किलो। अब मैं ये कहता हूँ कि वो 20-30 रुपए किलो तो आपका टोटल 50 रुपए का खर्चा आ गया, और 20

0: रुपए का खर्चा लगा लो, लेकिन आपने उसको 150 रुपए भेज दिया, यानी 50 रुपए का खर्चा किया और आपने उसको 150 रुपए का बचा, मतलब 100 रुपया, 100 रुपया आपको बचा ना। अब आप बताइए, आपको जब 100 रुपए बच रहा है तो आप अपने प्लांट को बड़ा करना चाहेंगे और अपने व्यापार को बड़ा चाहेंगे, तो आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं उन्हीं पौधों से, जिनसे आप मुश्किल से काम चलाऊ उसे अर्निंग कर रहे हैं, अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग की तरफ चले जाएंगे तो आप और 10 परिवार आपके उन पौधों के दम पे आप लोगों को रोजगार दे सकते हो, या दूसरे परिवार उस पर निर्भर होके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि खेती एक ये नहीं है कि अब चलो चलो गुजारा हो जाए, गुजारा मत, इसको बहुत बड़ा एक व्यवसाय के रूप में आप लेके चलेंगे, सोचेंगे कि हमारी खेती एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे लिए, बहुत बड़ा उद्योग हम इस पर इसके आधार पर स्थापित कर सकते हैं। और एक टाइम ऐसे मैंने भी ऐसे किसान देखे हैं जिन्होंने थोड़े से शुरुआत की और बाद में उनकी डिमांड इतनी बढ़ी तो आसपास के जितने भी, जैसे मान लो आप अचार का ही करना चाहें, आम का अचार का, तो आसपास ढूंढने लग गए कि भाई और आम मिल जाए, कहीं और कैरी मिल जाए ताकि मैं लोगों की पूर्ति कर सकूं।
1: तो अब हमें जैसे हमारे किसान भाई हैं उनको, जो युवा वर्ग है उनको बताएं कि जैसे मधुमक्खी पालन है वो भी आज के समय में बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस योजना से भी हमारे जो किसान भाइयों किस प्रकार जुड़े उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
0: देखिए, मधुमक्खी पालन से भी कुछ कुछ किसान परिचित हैं
1: जी,
0: क्योंकि वो ऐसे किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है और वो किसान इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उद्यान विभाग जो है इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है
1: जी।
0: तो किसान भाई इस चीज की ट्रेनिंग लेके इससे अपना वो कर सकते हैं।
1: अब गफूर खान जी, हमारे पशुपालक भाई हैं जो पशुपालन से आधारित जो व्यवसाय है उसके बारे में, जैसे बकरी पालन है, तो उसके बारे में जानकारी किसान भाइयों को दें।
0: जी हाँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन की कमी है
1: जी,
0: तो वो 2 या 4 बकरी पालन से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो बकरी से आमदनी बहुत अच्छी होती है। अगर बकरा है तो देखिए 1 या 2 साल का बकरा 1 लाख रुपए तक सेल हो जाता है
1: जी।
0: दूसरा एक इसमें एक और चीज़ है, जैसे दुम्बा पालन, दुम्बा
1: जी,
0: दुम्बा एक भेड़ की किस्म है, 2-2.5 लाख रुपए का बिक जाता है।
1: अच्छा, मुर्गी पालन के बारे में जानकारी चाहिए कि किस तरह से हम अपनाएं इसको।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई जमीन जो है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा एडिशनल हम कुछ करना चाहें तो किसान जैसे मुर्गी पालन का व्यवसाय आप कर सकते हैं, और मुर्गी पालन के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो जो अपना पशुपालन विभाग है वो समय समय पर ट्रेनिंग कराता है। आपके क्षेत्र में जो पशुपालन के डॉक्टर होंगे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या अलवर में यहाँ जो पशुपालन विभाग है आप, या आप जहाँ भी जिस क्षेत्र से भी सुन रहे हैं वहाँ क्षेत्र में जो पशुपालन से संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क करके वो शेड्यूल ले सकते हैं कि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि सभी विभागों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जब आपको उचित लगे, जब आपको समय हो उस हिसाब से आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, और उससे आपको कितना क्या प्रॉफिट हो पूरी तरह से तसल्ली से उसकी तसल्ली करके तब उस किसी भी कदम को तब बढ़ाए। तो ये चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी कि भाई वो कम स्पेस में, कम जगह में और बहुत कम संसाधनों में अच्छी आमदनी आप वहाँ से ले सकते हो। तो इस तरह का कह रहे दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत और प्रयास करनी पड़ेगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपने आप को सिंपल जमींदार समझने की बजाय आप अपने आप को एक बिजनेस मैन समझना शुरू कर देंगे तो आप उस तरह से उसकी प्लानिंग भी करना शुरू कर देंगे
1: जी।
0: क्योंकि आज जमींदार के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार भी हैं, रोजगार नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मान लो जैसे कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपके पास संसाधन है, आप अपनी खेती कर रहे हैं, उसको एक किसान सेवा केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं, यानी आप लोगों को एक, जैसे गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडी दे रही है कस्टम हायरिंग सेंटर बना के
1: जी,
0: तो आप उसको रन कर सकते हैं, या जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा तो सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करके आप वहां रोजगार ले सकते हो
1: जी। बिल्कुल, यानी कि इस तरह से हमारे जो युवा किसान भाई हैं वो अलग तरह से काम करके अपना रोजगार,
0: हाँ, थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन का, ई कॉमर्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो जो हम प्रोसेसिंग करके जो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो हर तरीके, चाहे आपका वेजिटेबल हो, जैसे अपने यहाँ ग्रीन हाउस बहुत

0: बहुत हैं, कम क्षेत्र में लोग ग्रीन हाउस करके अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं
1: जी।
0: अब उसका क्या है कि ऑनलाइन ही आप, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन का,
1: बिल्कुल
0: आज तो लोगों को क्या है कि सब्जी घर घर मंगा रहे हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करके जो युवा हैं हमारे किसान हैं, वो 2, 4, 6, 10 मिलके एक किसानों का एक ग्रुप मिल सकता है, वो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें एक अच्छा रेट मिल सकते हैं। बस थोड़ा सा क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। वो एक प्लेटफॉर्म है कि भाई अब देखो एक टर्म हो जाती है फार्म टू
1: जी
0: टेबल, यानी किसान भी खुश होगा कि भाई आप फार्म से सीधा आपके पास आ रहा है
1: जी, बिल्कुल। अब गफूर खान जी, हम एक और जानकारी किसान भाइयों को दिलवाना चाहें कि जैसे इस समय हम देखते आ रहे हैं धीरे धीरे पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जा रहा है, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है
0: जी।
1: तो हमारे जो किसान भाई हैं जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उसके अलावा अगर वो बागवानी की तरफ जाएं तो उसमें क्या संभावनाएं हैं, हमारे किसान भाइयों को उसके बारे में, बागवानी के बारे में भी जानकारी दें।

0: आपको दिलवाना चाहें कि जैसे इस समय हम देखते आ रहे हैं धीरे धीरे पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जा रहा है, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है,
1: जी।
0: तो हमारे जो किसान भाई हैं जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसके अलावा अगर वो बागवानी की तरफ जाएं तो उसमें क्या संभावनाएं हैं, हमारे किसान भाइयों को उसके बारे में, बागवानी के बारे में भी जानकारी दें।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि बागवानी ऐसा पौधा है, ये फलदार पौधे ऐसे हैं, इनमें शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी बाद में ऐसा होता है कि अगर आप लंबे समय पानी नहीं देते हो उसके बावजूद भी जब बड़ा हो जाता है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि इस साइड में किसानों को जाना पड़ेगा,
0: जी बिल्कुल, क्योंकि
1: है ना?
0: पानी की जो समस्या है, जो हमारे पानी पर आधारित जो फसलें हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं,
1: हाँ
0: पानी की कमी है तो किसान भाई तो परेशान है ही, तो इस तरह से उससे अलग हटकर बागवानी की तरफ में उसको अच्छी आमदनी हो
1: मिल
0: सकती है।
1: सकते हैं। देखो किसान भाई हैं, बहुत से किसान भाई आप जो सुन रहे हैं अपनी बात को,
0: जी
1: उनको मैं बता दूं कि जैसे मान लो किसी ने नींबू का पौधा बो रखा है,
0: जी
1: अब उस किसान खुद सोच ले कि वो उसने पानी कब दिया, शायद उसको पता नहीं होगा उसने पानी कब दिया।
0: बिल्कुल
1: नेचुरली जो हो रहा है वो नेचुरल तरीके से हो रहा है और फल भी काफी अच्छा दे रहा है,
0: बिल्कुल
1: तो उस तरह से भी सोचना पड़ेगा कि भाई जो खेती है पानी वास्तव में कम होता जा रहा है, जमीन की जो उत्पादकता है कि इतने रसायन डल डल के उत्पादकता भी धीरे धीरे
0: कम
1: कम
0: होती
1: हो
0: जा
1: रही
0: रही
1: है।
0: है, बिल्कुल
1: और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप उद्यानिकी की तरफ जाते हैं
0: जी
1: और उस उद्यानिकी के, मैंने सबसे पहले उसी का एग्जाम्पल दिया आपको आंवले का,
0: जी बिल्कुल,
1: अगर नींबू है, नींबू
0: नींबू,
1: आपने बोया है, आपने आंवला बोया है, आपने चीकू बोया है, मौसमी बोया है, या जो दूसरे जैसे अभी किसान भाई का था एक आम उसने
0: आम
1: बोया है,
0: आम भी बोए
1: तो
0: हैं,
1: ये
0: बेर हैं,
1: ऐसे पौधे हैं कि इनका प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करके जाएंगे तो किसान को थोड़े क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्र में उसको अच्छी आमदनी वहां से प्राप्त कर सकता है। और एक युवाओं में एक रुझान बढ़ेगा कि अगर थोड़े से क्षेत्र से हम इतनी आमदनी है, तो वो एक जैसे सरकार का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एफपीओ का,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल,
1: उसमें क्या है कि क्षेत्र के जो किसान है, जो जो भी उसका उत्पादन है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए
0: जी
1: और उसकी अपने उसकी टोटल प्रोसेसिंग करके, आप रो बेचना चाहें रो बेचें, मतलब जैसी पब्लिक की डिमांड है
0: उसी के अनुसार वो,
1: उसी के अनुसार अपना एक, मैंने बोला कि अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, उस
0: जी
1: प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने लोकल क्षेत्र में सेल करें, वो आपका बाहर भी जा सकता है। जैसे आपने वैल्यू एडिशन किया,
0: जी
1: वैल्यू एडिशन करके उसको आप उसकी क्षमता बढ़ा के उसको कहीं भी आप भेज सकते हो,
0: जी बिल्कुल,
1: है ना?
0: तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो बागवानी की तरफ जा सकें।
1: हाँ
0: अब हम एक जानकारी दिलवाना चाहें कि जैसे मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ये क्या है, इसके बारे में भी
1: हाँ
0: हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: देखिए ये किसानों के लिए एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जो किसान से मतलब जो खेती आधारित कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है,
0: जी
1: क्योंकि सरकार की मंशा है,
0: जी
1: अगर उसके आधार पर आप उद्यम स्थापित करना चाहते हो तो सरकार 5 से 25 लाख रुपया, यानी एक सब्सिडी देती है किसान को,
0: जी
1: जो किसान हो या एक किसान हो या एक किसानों का ग्रुप हो,
0: ग्रुप हो, समूह में हो या
1: उनको
0: अकेला
1: उनको
0: किसान,
1: सब्सिडी देती है। जैसे अभी किसान भाई बोल रहा था कोई भी अचार बनाने का एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, वैल्यू एडिशन लगाना चाहता है,
0: जी
1: तो उसका प्लांट का साइज क्या है, मतलब कितने बड़े उसमें करना चाहता है, उसका जो काम है वो कितने बड़े उसमें करना चाहता है, उस हिसाब से सरकार ने सब्सिडी निर्धारित की है 5 लाख से 25 लाख रुपये।
0: जी बिल्कुल,
1: तो सरकार भी बहुत मदद करती है, बहुत मदद कर रही है, और किसान भाई जब आगे आएंगे तो उनका वो कितना बड़ा साइज का कोई भी प्लांट या फैक्ट्री अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं उसके हिसाब से सरकार सब्सिडी भी देती है और लोन की फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाती है, बशर्ते कि किसान आगे आए और किसान सरकार के द्वारा जो संचालित योजना है उनका भी फायदा उठाएं और अपने परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को इस माध्यम से मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं। और रोजगार की बात रही तो इसमें इतनी संभावना है, आप देखिए, आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आ रहे
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल, यानी कि हमारे जो
1: तो
0: गफूर खान जी,
1: उनका आने का आप देखिए,
0: जी
1: आप उनको रॉ मेटेरियल 15, 20 रुपये, 30 रुपये किलो मिल रहा है,
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन उसी को प्रोसेसिंग करके वैल्यू एड करके वो 250, 300 रुपये किलो सेल कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: अब
0: यानी
1: बताओ इससे बड़ा मार्जिन और क्या हो सकता है एग्रीकल्चर।

0: सेक्टर में बहुत जबरदस्त मार्केट भी है और उसका मार्जिन भी बहुत अच्छा है, रोजगार के अवसर भी बहुत हैं,
1: जी
0: बस ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल। तो गफूर खान जी, आप आए और हमारे जो किसान भाई हैं उनको कृषि में उद्यमिता विकास और रोजगार की जो संभावनाएं उसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी, और उम्मीद है कि हमारे पढ़े लिखे जो युवा वर्ग हैं जो खेती पर आधारित रोजगार अपना स्थापित करना चाहें वो कर सकें। तो जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: उन्नत कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं किसान भाई, तो राज्य सरकार की अनुदान योजना का लाभ उठाएं। मल्टी क्रॉप थ्रेशर खरीदने पर अधिकतम 1,00,000 रुपए, रोटावेटर खरीदने पर अधिकतम 50,400 रुपए और सीड ड्रिल एवं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन पर अधिकतम 28,000 रुपए का अनुदान उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम किसान सेवा केंद्र से संपर्क करें। आत्मा योजना अलवर द्वारा कृषक हित में जारी।
6: किसान भाइयों, अच्छी अच्छी जानकारी के क्रम में आगे हमारी चर्चा हम करते हैं लखपति दीदी योजना के बारे में। भारत सरकार की इस योजना में जो महिला उद्यमी बनना चाहती हैं उन्हें इस योजना के तहत अपना बिजनेस शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए गाइड किया जाता है। साथ ही महिलाओं को बिजनेस से संबंधित बारीकियाँ भी बताई जाती हैं। लखपति दीदी के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण में बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और बाजार तक पहुँच बनाने में सहायता करना शामिल है। महिलाओं को फाइनेंशियल नॉलेज से मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी वर्कशॉप इसमें चलाई जाती हैं। इन वर्कशॉप में बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और बैंक खाता विवरण। तो हमारी जो भी बहनें इस योजना का फ़ायदा लेना चाहती हैं वो इसका ऑनलाइन, इसकी जो वेबसाइट है और ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इस योजना का फायदा हमारी बहनें उठा सकती हैं। इसी के साथ चलते चलते आपका थोड़ा सा मनोरंजन भी करवा दिया जाए, तो सुनवाती हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

खामोशी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है ऐतराज, गीत हिमेश रेशमिया का है और संगीत है समीर का।

गुलशन बाबरा का लिखा ये गाना कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया। आवाजें थी शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था रफू चक्कर।

और आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति। नागमणि फिल्म से गाना है, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ें हैं।

संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था, अनु मलिक ने संगीत दिया था। फिल्म का नाम था नागमणि और आवाजें थी सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को। फिल्म का नाम है एक नया रिश्ता। गीतकार है निदा फजली, संगीत है खय्याम का।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म एक नया रिश्ता का ये गीत। और आइए सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अगर तुम ना होते का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अगर तुम ना होते का ये गीत अभी आपने सुना। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म का नाम है ममता।

ममता फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आज आपको सुनवाते हैं माता दीन और उनके साथियों के गाए हुए कुछ लोकगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

को काई उठे आंधी रेड़ा में। अरे मारा बीजना की डांडी खेचे चाले मेड़ा।

लोक संगीत में अभी आप मातादीन और उनके साथियों को सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का यह सदस्य का चैनल है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को

0: 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भी कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस सुविधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं।

0: रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news.

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में सातवां आसमान फिल्म का गाना, इसे लिखा है सूरज सानिम ने, संगीत राम लक्ष्मण का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हुई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

0: शम्मी कपूर के साथ उनकी एक और फिल्म आई थी ब्लफ मास्टर। इसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई।
1: जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, जब से तुझे...

दोस्तों उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: जमाने के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

दोस्तों, सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी

0: नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेगी।

0: मैंने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी तीन फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

0: जेंटलमैन जेंटलमैन।
1: और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

0: नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।
1: ना ना ना ना ना ना ना।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रू, चैतारी और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। छाया गीत में आज ऐसे गाने हैं जिनके दो संस्करण

एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। सुनने के आनंद के लिए हमने किसी दिलचस्प मोड़ पर इन गानों को आपस में जोड़ दिया है। कुछ अल्फाज कहना कितना मुश्किल होता है, जब कहना इतना मुश्किल है तो लिखना और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना। फिर कैसे कहें अपने दिल की बात, कैसे कहें जिसे कहने के लिए बेकरार है दिल, लरसते हैं होंठ, कांपता है बदन और मिलते नहीं अल्फाज अपनी बात कहने के लिए।

कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। खुशी की चमक, दुख की झलक, सब कुछ आंखों में तैर जाता है। आंखों में समाया है हमारे दुखों का नमक और खुशियों की चहक। किसी की आंखें रोशनी हैं, उम्मीद हैं, इन आंखों से रोशन है हमारा संसार। आंखें आंखों से करती हैं बातें, आंखों की इस भाषा को कम ही लोग जान पाते हैं।

0: गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: इससे नाराज नहीं जिंदगी,
0: हैरान हूँ मैं। हम अभी हाजिर हुए

जिंदगी आसान भी है और दुश्वार भी। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है हमें। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। यूं लगता है कि सामने है मंजिल और पल भर में मंजिल कोसों दूर होती है। जिंदगी कभी एक कविता है, कभी एक अफसाना और कभी एक महागाथा। चलो जिंदगी की उंगली पकड़ें और बातें करें इससे, कह दें इससे अपने सारे गिले शिकवे।

बारिश कुदरत की एक कविता है, बारिश संगीत है प्रकृति का, बारिश एक वरदान है, ये जज्बात जगाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी बारिश में घर के अंदर बंद रहना एक गलती है, बारिश तो बाहर निकलने के लिए

0: यह गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष और एक महिला संस्करण। सुनने के आनंद के लिए हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम, फिल्म जंगली।
1: एहसान तेरा
2: होगा मुझ पर।
0: फिल्म चिराग।
1: तेरी आंखों के सिवा
2: दुनिया में रखा क्या।
0: फिल्म मासूम।
1: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी
2: हैरान हूँ मैं।
0: और फिल्म मंजिल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: काबू वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी

0: दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।